बच्चे के रोने की कोई भाषा कोई मजहब नहीं होता है। आधार घड़ते हो खुद ही और फिर चल निकलते हो अभिमान और नफरत करने के लिए। मालिक ने कहां पर बनाए हैं कोई चिन्ह कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

जय शिव शंभु। प्रिय भक्तों, आज हम आपको कैलाश के निवासी उमापति त्रिनेत्रधारी, जिनके शीश पर चंदा और जटाओं में माँ गंगा शोभायमान हो रही हैं, हम उन अजर अमर अविनाशी जो सत्य हैं, शिव हैं और सुंदर भी हैं, उन शिव भोलेनाथ की महिमा का बखान करने जा रहे हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को समुद्र मंथन के समय कालकूट विष को पीकर किस प्रकार बचाया। तो आइए श्रवण करते हैं कथा में, किंतु उससे पहले मेरे साथ श्रद्धा भाव से बोलिए जय हो भोलेनाथ।

के राज बलि के पास आए और सागर मंथन की बात बतलाई, अमृत देने का आश्वासन दिया। तो यह सुनकर बलि सागर मंथन की बात मानकर सागर मंथन की क्रिया प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम सागर मंथन के दौरान कालकूट नाम का अति तीक्ष्ण विष निकलता है, जिसे देखकर सभी देव और दानव घबरा जाते हैं। इस विष को ग्रहण कर

पान कर धुनी रमा कर बैठे थे, नीलकंठ के नाम से विख्यात हुआ। प्रभु आपकी महिमा परम्पार है, प्रभु आप तो बहुत ही दयालु तथा भोले हैं, तभी तो आप

पावन स्थान भारत वर्ष में ही नहीं अपितु समस्त संसार में जाना जाता है। यहाँ भगवान नीलकंठ शिवलिंग रूप में विराजमान है।

0: रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।
1: बढ़ाए अपना बिजनेस एडवर्टाइज करें FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अब

0: पेश है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम को तैयार किया है सामुदायिक रेडियो गुड़गांव की आवाज ने। विश्व टीबी दिवस पर वार्ताकार है आरती। एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आप सबकी अच्छी सेहत और सही जानकारी के लिए हमेशा प्रयासरत है।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती। आज हम आपके लिए एक खास कार्यक्रम लाए हैं विश्व टीबी दिवस के उपलक्ष्य में, और मेरे साथ हैं भारत के कई उच्चतम डॉक्टर्स। मार्च 24 विश्व टीबी दिवस है। टीबी, जिसे हम तपेदिक या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसके दुनिया भर के 1/4 से भी ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं। हम सबके आसपास टीबी है, चाहे वो गुप्त हो या सक्रिय। यह जानना बहुत जरूरी है। ये खतरनाक बीमारी है क्योंकि बिना इलाज के लगभग 50% मरीजों की मृत्यु हो जाती है। परंतु टीबी से बचना, उसके लक्षण पहचानना और इसका इलाज सही तरीके से कराना एक बहुत सफल प्रक्रिया है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि आज भारत के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हमारे साथ रेडियो पर आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर अनुराग भार्गव और डॉक्टर रजत गोयल। नमस्कार डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गोयल। संक्षिप्त में थोड़ा अगर आप बताएं कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, जिसको हम क्षय रोग या तपेदिक भी कहते हैं, वो किस तरह की बीमारी है, कितनी खतरनाक है, फैलती कैसे है और भारत के संदर्भ में टीबी इतनी बड़ी चुनौती बनकर क्यों खड़ी हो गई है।
2: नमस्कार आरती, और आपके श्रोताओं को भी हार्दिक नमस्कार मेरी तरफ से। तो आज हम वर्ल्ड टीबी डे का जो है हर साल 24 मार्च को वो मनाया जाता है, जब सबको हम याद दिलाते हैं, जैसे आपने कहा कि अभी भी टीबी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहां तक कि बहुत पुरानी बीमारी है, ये हजारों सालों से मानव के साथ ये बीमारी जो है रह चुकी है और अभी भी फैलती जा रही है। और जैसे आपने कहा, ये भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर दुनिया भर के केसेस में से भारत में 1/4 केस हम यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये बीमारी कैसे फैलती है? ये हवा से फैलने वाली बीमारी है, संक्रमित बीमारी है। जिसको किसी को टीबी हो, फेफड़े में जिसको टीबी हो, और वो व्यक्ति जब खांसी करते हैं या बोलते भी हैं, उनके सांस में छोटे छोटे कीटाणु के जो पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो बाहर आते हैं और हवा में फैलते हैं। तो जो लोग उनके आसपास हैं, वो मरीज के आसपास हैं या बहुत साथ रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा वेंटिलेशन वगैरह नहीं है, काफ़ी टाइम साथ बिताते हैं, उनके लिए ये रिस्क अधिक है कि उनको भी ये टीबी का इन्फेक्शन जो है वो लग सकता है। अब टीबी में जो है वो एक बहुत यूनिक चीज है कि जितने लोगों को इन्फेक्शन होता है, सब बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में अपनी इम्यूनिटी होती है, जो नेचुरल इम्यूनिटी है या बिकॉज ऑफ एक्सपोजर वो इम्यूनिटी बनी हुई है, जिससे ज्यादातर लोग जो हैं वो टीबी के कीटाणु जब सांस से अंदर जाते हैं हमारे फेफड़े में, उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं और वो जो है बीमारी उस समय नहीं बनती है। परंतु क्या होता है कि जैसे भारत जैसे देश में जहाँ पे टीबी काफी कॉमन है, एक्सपोजर सबको ही किसी ना किसी टाइम पे हो ही जाता है, पर ज्यादातर लोगों को टीबी की बीमारी नहीं होती है। परंतु जब किसी भी टाइम अगर हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, जैसे कि शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी हो जाए, या कुपोषण हो, मेल न्यूट्रिशन हो, या फिर HIV जैसे बीमारी हो जिससे इम्यूनिटी कम होती, या कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं और किसी टाइप के इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हो, उस समय ये बीमारी एकदम से दोबारा बाहर आ सकती है। इसका मतलब ये है कि जो कीटाणु हैं, ये हमारे किसी अंग में काफी सालों तक चुपचाप बैठ सकते हैं और बाद में वो कभी भी बीमारी बन के दिखा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो फेफड़े में टीबी होती है वो सबसे मतलब इन्फेक्शियस है और खतरनाक इसलिए है कि उसमें जो खांसी करते हैं उसमें कीटाणु बाहर आते हैं, वो फैल सकते हैं, पर टीबी जो है वो किसी भी अपने शरीर के अंग को प्रभावित कर सकती है, जैसे ब्रेन में टीबी हो सकता है, किडनीज में हो सकता है, अपने इंटेस्टाइन्स में हो सकता है, और बहुत कॉमनली लिम्फ नोड्स में हो सकता है, जहाँ जब जब बाहर से कोई स्वेलिंग दिखाई देता है उसको लिम्फ नोड टीबी कहते हैं। हड्डियों में भी हो सकता है, ज्यादातर उसे दर्द होता है और स्वेलिंग हो जाती है। इसलिए टीबी के जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो बहुत वेरीड हैं, बहुत तरह तरह के सिम्टम्स हैं। हमारे लिए चुनौती इसलिए है कि हमारा जो रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, जो सरकार का जो नियंत्रण कार्यक्रम है, वो कई सालों से चल रहा है और पिछले कुछ सालों में उसको थोड़ा ज्यादा इम्पेटस मिला है, उसको ज्यादा फोकस दिया है। प्रधानमंत्री ने ये भी सब घोषित किया था कि भारत में टीबी को कम हटाया जाए, एलिमिनेट किया जाए, और इसके लिए सब प्रयत्न होने चाहिए। तो पिछले कुछ सालों से इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जैसे डायग्नोस्टिक्स। कोविड में हमने देखा कि जो पीसीआर टेस्ट है
1: जी
2: वो लोग कराते थे टेस्ट के लिए, तो उसी तरह से टीबी के लिए भी एक पीसीआर टेस्ट है, जो रैपिड टेस्ट है, जीन एक्सपर्ट उसको कहते हैं, सीबी नैट कहते हैं। अब कई भारतीय कंपनीज ने उसी तरह के रैपिड टेस्ट बनाए हैं, जैसे ट्रू नैट है, और वो तरह जगह जगह में उपलब्ध किए गए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, अर्बन हेल्थ सेंटर्स, अस्पतालों में। तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा ये है कि एक ही दिन में टीबी का डायग्नोसिस हो सकता है। जब पुराना टेक्निक वो था कि स्मेयर माइक्रोस्कोपी, थूक को निकाल के उसको स्टेन करके देखते थे, और उससे कई केसेस मिस हो जाते थे। तो बहुत जरूरी है कि जो ये नए टेस्ट हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कहते हैं, उनको यूज किया जाए टीबी डायग्नोस करने के लिए। और टीबी के जो ड्रग्स हैं ये भी बिल्कुल फ्री, मुफ्त में मिलते हैं हर कोने कोने में देश के। और कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम भी शुरू किए हैं सरकार ने, और एमडीआर टीबी, जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, उसकी बातचीत अभी डॉक्टर गुलेरिया और बताएंगे, उसके लिए भी एक अलग ट्रीटमेंट प्रोग्राम है। ये सब कुछ मतलब मुफ्त मिलता है। और टीबी प्रोग्राम में ये भी है कि पेशेंट का सपोर्ट, उसका फॉलोअप, उसके बाकी क्या उसके घर के नीड्स हैं वो भी देखा जाता है, सोशल सपोर्ट भी देखा जाता है। पेशेंट को 500 रुपये महीने भी मिलते हैं
1: जी
2: थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये कई कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं सरकार ने, परंतु ये देखा जा रहा है कि टीबी बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसलिए हमें जानकारी सबके आसपास बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लोग जो हैं उनको आना चाहिए। कई कई बार लोग सोचते हैं थोड़ी सी खांसी हो गई है, बुखार है, ठीक हो जाएगा, या पास में दवा के दुकान में जाके दवाई ले ले लेते हैं, पर अगर 2 हफ्ते से ऊपर हो जाए और
1: जी
2: खांसी, बुखार, भूख ना लगना, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, अगर ये कंटिन्यू करें, तो किसी भी गवर्नमेंट के डिस्पेंसरी, हेल्थ सेंटर में जाके टीबी का टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
1: जी तो आपने बहुत जरूरी जानकारी दी कि ये नहीं है कि हम खांस रहे हैं, कई हफ्ते निकल गए उस खांसी को और हम उसको आम खांसी ही समझ रहे हैं। उसका मतलब है 2 हफ्ते के बाद समय आ गया है कि हम हेल्थ सेंटर जाएं और जांच कराएं।
2: बिल्कुल
1: डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आपसे अगर हम पूछें कि भारत में टीबी के इलाज को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं, कुछ चुनौतियां डॉक्टर सौम्या ने बताई, बट अगर आप बताएं कि टेस्टिंग में, इलाज में, बीमारी आगे ना फैले उसमें क्या चुनौतियां हैं, जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की हकीकत हमारे देश को जकड़े हुए है उसके ऊपर भी अगर आप कुछ जानकारी दें कि ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या है और क्यों ये शुरू हुई।
3: पहले मैं आपको, आरती जी, और आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगा। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे डॉक्टर सौम्या ने बताया कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है, और अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो क्योरेबल भी है। लेकिन तब भी अगर हम देखें तो इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे ज्यादा जो डेथ्स हो रही होती हैं वो टीबी के कारण हो रही है। इसलिए ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ठीक भी कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी, इसके बावजूद भी, सबसे ज्यादा डेथ्स इन्फेक्शियस डिजीज के कारण टीबी में हो रही है। इसलिए इसका टेस्टिंग, ट्रीटिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन्फेक्शन को जब कैसे रोके ये भी बहुत जरूरी है। टेस्टिंग का जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि अगर किसी को फेफड़े का टीबी है और तो उसको खांसी, बुखार, अगर वो रहे 2 हफ्ते से ज्यादा ठीक नहीं हो रहा हो, तो ये बहुत जरूरी है कि वो अपना टेस्ट करा के ये पता करें कि उसको टीबी है या नहीं है, और अगर टीबी है तो उसका जल्दी इलाज हो जिससे वो बीमारी आगे और लोगों में ना फैले। इसके साथ साथ और अगर लक्षण हो, जैसे लो ग्रेड फीवर, बुखार हो रहा है जो शाम को ज्यादा हो जाता है, भूख लगना कम हो, वजन कम हो, गर्दन में कुछ गांठें बन जाएं, तो आपको अपनी जांच करानी जरूरी है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम टेस्टिंग की बात करें, तो जब तक मरीज आगे आएगा नहीं, अपना टेस्ट नहीं कराएगा, तो डायग्नोसिस नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरा, कई लोग ये डरते हैं कि हमें टीबी डायग्नोज हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या होगा। ये समझना जरूरी है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रीटेबल डिजीज है और किसी को भी हो सकती है।
1: जी
3: तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको आगे आके अपना टेस्ट कराना चाहिए। और जैसे डॉक्टर सौम्या ने कहा कि जो फेफड़े का टीबी है, उसमें पहले हम बलगम की जांच करते थे, जो इतना पॉजिटिविटी रेट उसका कम था, 40 से 50% था, अगर बलगम आ रहा है। अब नए नए टेस्ट आ गए हैं, मॉलिकुलर टेस्ट आ गए हैं, सीबी नेट है, जीन एक्सपर्ट है, जिससे हम अगर बहुत माइनर सा इन्फेक्शन भी हो, कीटाणु कम हो, तो भी हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं और इसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है, और ये भी पता चल जाता है कि ये सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट टीबी है। और
1: अच्छा
3: ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम में हर जगह अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल है। और ये बलगम की जांच भी कर सकते हो, अगर कहीं और भी टीबी हो तो वहां से भी हम सैंपल लेके, चाहे वो गांठ में हो या छाती में पानी हो या पेट में पानी हो, उसकी जांच करके भी ये देख सकते हैं कि टीबी है या नहीं है। तो इसलिए टेस्टिंग जो है ये अब काफी आसान होगी, और टेस्ट के नए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आए हैं उससे रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है, और उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिटी जो हम कहते हैं वो ज्यादा बहुत अच्छी है। लेकिन लोगों को आगे आके अपना टेस्ट कराना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं कराएंगे, अगर वो अपने टेस्ट नहीं कराएंगे, तो डायग्नोसिस नहीं होगा और बीमारी ज्यादा फैलेगी। ये भी जरूरी है कि हम ये देखें कि ये फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल हो, टेस्टिंग के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, कार्टरेज चाहिए, वो भी सब जगह हो, और सरकार उस पे रेगुलरली काम कर रही है कि टेस्टिंग जो है हर जगह पे फ्रीली अवेलेबल हो। अगर एक दफा डायग्नोज हो जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट की बारी आती है। अब है तो ये ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया के कारण है, इन्फेक्शन है, लेकिन ये जो कीटाणु है, बहुत तेज कीटाणु है, बहुत चालाक कीटाणु मैं कहूँ है, क्योंकि इसमें दो चीजें बहुत है। एक तो ये बहुत जल्दी रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है, अगर हम एक दवाई दें तो दवाई कुछ दिनों बाद असर करना कम कर देती है। और ये लोगों ने पहले देखा, जब ये नई दवाई आई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी के ट्रीटमेंट के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो लोगों ने सोचा हम टीबी पे पूरी तरह से काबू कर लेंगे। उन्होंने सब लोगों को, जो टीबी वाले लोग थे, उनको एक एक इंजेक्शन देना शुरू किया, लेकिन एकदम पता चला कि एक दवाई से ही एक कीटाणु मरता नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट डेवेल्प करके इसमें असर दवाई का कम हो जाता है। इसलिए टीबी ऐसी बीमारी है जिसमें ज्यादा दवाइयां देनी पड़ती हैं, जिससे वो कीटाणु जो है वो पूरी तरह से मर जाए, और अगर उसमें कोई रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी हो वो भी मर जाए। इससे लोग ये परेशान हो जाते हैं कि हमें चार चार दवाइयां लेनी पड़ती हैं, ज्यादा दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम जड़ से बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, वो दवाइयां जो है वो सारी जरूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर तो ऐसी ज्यादा दवाई दे रहे हैं और अपनी तरफ से वो कम कर देते हैं, जिससे
1: जी
3: आगे जाके उनको रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है और इससे नुकसान ज्यादा होता है। दूसरा चीज ये है कि जो ये कीटाणु को अगर हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये जैसे डॉक्टर सोमे ने कहा कि कभी दफा छुप जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है, तो इसलिए दवाई जो है वो लंबे अरसे तक देनी पड़ती है। तो टोटल ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने का है। पहले 2 महीने में हम जो इंटेंसिव फेज कहते हैं, ज्यादा दवाई देते हैं, फिर कम कर देते हैं, लेकिन ड्यूरेशन भी कम ज्यादा है। तो टीबी को ट्रीट करने के लिए, चाहे है तो एक आम बैक्टीरिया, ट्रीटमेंट जो है ज्यादा चैलेंजिंग है, ज्यादा दवाई देनी पड़ती है, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए देनी पड़ती है। पर लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर हम ये दोनों चीजें करें, दवाई भी पूरी लें, पूरा ड्यूरेशन लें, तो हम बीमारी को जड़ से निकाल सकते हैं, फिर से तकलीफ नहीं होगी। और अगर हम दोनों चीजों में डील कर दें, तो हम इस कीटाणु को एक मौका देते हैं कि वो रेजिस्टेंट बन जाए और आगे जाके फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसलिए लोगों को ये समझना जरूरी है कि ट्रीटमेंट रेगुलरली लेना जरूरी है और सारी दवाई लेना जरूरी है। कुछ लोग दवाई कम कर देते हैं, कुछ उसका डोज कम कर देते हैं, दोनों से आपको नुकसान होगा। तो ये मरीजों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमने टीबी की लड़ाई जीतनी है और आपने बिल्कुल ठीक होना है, तो अपनी दवाई पूरी लें। अगर दवाई लेने से आपको कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि हर एक दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके लिए हम ऑल्टरनेट दवाई भी दे सकते हैं, डोज एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से दवाई को आप कम ना करें, क्योंकि वो इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है।
1: जी
3: अगर आप पूरा इलाज करोगे तो बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ये बात एक बहुत जरूरी है। दूसरा रहा कि इन्फेक्शस कितना है, हम इसको आगे कैसे रोक सकते हैं। अब टीबी हमारे सारे बॉडी में किसी भी अंग में हो सकती है। लोग कहते हैं कि टीबी कैन इन्वॉल्व एनी ऑर्गन, एंड कॉज एनी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर
1: ओके
3: टीवी हो तो आपका यूट्रस भी बढ़ सकता है, तो कभी कभी पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं और कई लोगों को लगता है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इसलिए पर ये बहुत जरूरी है समझना कि जो फेफड़े की टीवी है वो ही ज्यादा इन्फेक्शस होती है। अगर आपको पेट की टीबी है, स्पाइन टीबी है, रीढ़ की हड्डी की टीबी है या गांठों की टीबी है, आप दूसरे किसी को ही फैला नहीं सकते। आप ये आप नॉन इन्फेक्शियस हो। तो अगर आपको सिर्फ खांसी बलगम है और बलगम में टीबी डायग्नोज होता है तभी आप इन्फेक्शियस हो। इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं कि अगर किसी को गांठ की टीबी है कि वो अब खाना अलग कर दे, लोगों से मिलना कम कर दे, ये घर वालों से ना मिले, क्योंकि आप नॉन इन्फेक्शियस हो। दूसरा, अगर आपको फेफड़े का भी टीबी है तो अगर आप दवाई अपनी रेगुलरली लोगे तो 3 से 4 हफ्ते में आपके बैसिलरी लोड, जो हम कहते हैं कीटाणु, इतने कम हो जाएंगे और कीटाणु मर जाएंगे कि आप नॉन इन्फेक्शियस हो जाओगे। और फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप किसी और को टीबी दे सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि जो फेफड़े के बाहर का टीबी है वो इन्फेक्शियस नहीं है, और अगर जो फेफड़े में टीबी है वो भी अगर हम दवाई रेगुलरली ले तो 3 से 4 हफ्ते में हम नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, और उसके बाद हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम औरों को टीबी नहीं फैला सकते। अपना खाने पे और डाइट पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो हम जल्दी इस बीमारी से ठीक होंगे। फिर आपने पूछा था एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अगर हम देखें तो इंडिया में जो एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस का बर्डन है वो काफी हाई है। ऑलमोस्ट हम ये कहते हैं कि 27% ऑफ जो सारे जो एमडीआर के केसेस हैं दुनिया में वो इंडिया में पाए जाते हैं, और ऑलमोस्ट 1.24 लाख पेशेंट्स जो हैं एमडीआर के वो भारत में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसका हम ब्रेकअप देखें तो नए केसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 2 to 3% ही हैं। लेकिन
1: अच्छा
3: अगर हम देखें जिन्होंने ऑलरेडी पहले ट्रीटमेंट टीबी का लिया हुआ है उनमें ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम एमडीआर कह रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 11 से 16% है। इसका ये मतलब कि जिन लोगों को पहले टीबी हुआ है और अगर उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा उन्होंने इरेगुलर किया है तो उनको फिर रेजिस्टेंट टीबी होने के कारण चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए जैसे मैं पहले कह रहा था कि आपको अपने इलाज पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इलाज पूरा नहीं करोगे तो आपको रेजिस्टेंट टीबी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और इसका कारण क्या है? एक कारण तो यही है कि अगर आप दवाई पूरी तरह से नहीं ले रहे हो उससे हो सकता है। कई दफा ये भी हो सकता है कि आपने बीच में दवाई छोड़ दी फिर ली, उससे भी रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है। कई दफा अगर आपको किसी और व्यक्ति से आप कॉन्टैक्ट में है जिसको रेजिस्टेंट टीबी था तो आपको वही इन्फेक्शन हुआ, जो कीटाणु ऑलरेडी रेजिस्टेंट बन गए थे, तो उससे भी कभी कभी एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना कि टीबी का जो ट्रीटमेंट, जो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, वो कई इट इज जो हम कहते हैं मैन मेड प्रॉब्लम है। अगर हम प्रॉपरली ट्रीट करें इसको तो हम रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को कम कर सकते हैं। तो इट इज व्हाट वी से फेलियर टू टेक द ट्रीटमेंट, नॉट फेलियर ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर हम दवाई नहीं लें तो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होगा, अगर हम दवाई पूरी लेंगे तो हम रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को रोक सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम डायग्नोसिस जल्दी करें, ट्रीटमेंट पूरा करें, और इससे घबराएं नहीं कि हमें टीबी हो गया तो हम दवाई ना लें। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो हम एमडीआर के केसेस को कम कर सकते हैं। एमडीआर में जो चैलेंज है वो टीबी से, जो हम आम टीबी कह रहे हैं उससे ज्यादा है, क्योंकि इसमें दवाइयां भी अलग सी हैं, दवाइयों का ड्यूरेशन भी लंबा है और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हैं। इसलिए एमडीआर टीबी अगर किसी को हो जाता है तो उसको फिर पूरा इलाज करना चाहिए, और इसमें सरकार के बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं, सारी दवाई मुफ्त मिलती है। अगर हम टीबी की बात करें तो डॉट सेंटर से आपको दवाई सारी मुफ्त मिलेगी, जैसे डॉक्टर सोमिया ने कहा कि और भी कई गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हैं,
1: सुविधाएं
3: जैसे निक्षय पोर्टल में आपको पैसे भी मिलेंगे, न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो हम सबकी चीजें अगर हम साथ साथ करें तो ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस दोनों का ट्रीटमेंट फ्री है, दोनों की दवाइयां भी अच्छी हैं, और नई नई दवाइयां भी आई हैं जो अवेलेबल हैं सरकार के थ्रू, तो उससे काफी हद तक लोग ठीक हो जाते हैं, उसका क्योर भी हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि टीबी से घबराना नहीं है, ये एक पूरी प्रिवेंटेबल और क्योरेबल डिजीज है, लेकिन इसका इलाज लंबा है और वो करना बहुत जरूरी है।
1: शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर रणदीप। अब हम चलते हैं डॉक्टर अनुराग भार्गव के पास। डॉक्टर अनुराग, हर साल 28 लाख भारतीयों को सक्रिय यानी एक्टिव टीबी होता है और अनुमानित 3 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अभी भी टीबी के विरुद्ध कोई कारगर टीका इजाद नहीं हुआ है, तो आप टीबी से बचाव के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं? आपने इस पर झारखंड में भी एक शोध किया है, इस पर सुझाव और जानकारी हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ साझा करिए।
4: पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसे डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर सौम्या ने बताया, एक उन्होंने जो जानकारी दी कि टीबी एक, हालांकि इसके लिए 100% कोई वैक्सीन नहीं है, फिर भी ये कई हद तक प्रिवेंटेबल है। और जैसे डॉक्टर सौम्या ने बताया कि सबसे जो हमारे पास ठोस चीज है इसको रोकथाम करने के लिए, वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी है। तो अधिकांश लोग जिनका टीबी के कीटाणु से सामना होता है, वो सक्रिय टीबी में वो परिवर्तन नहीं होता है, वो गुप्त गुप्त संक्रमण या गुप्त या टीबी इन्फेक्शन के स्टेज पे ही रह जाता है। तो अगर हम, और मैं अब थोड़ा सा, क्योंकि तकनीकी जानकारी साझा हुई है, मैंने ग्रामीण एरिया में करीब 15 साल काम किया, छत्तीसगढ़ में और फिर झारखंड में एक शोध कार्य में। तो वहाँ इसकी जो हमको टीबी की समस्या को उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि में भी देखना बहुत जरूरी है। तो हम कहते हैं कि सबको टीबी हो सकती है, मगर टीबी के कीटाणु से सामना, गुप्त संक्रमण का जो परिवर्तन है असक्रिय टीबी में, और उसके बाद जो कुछ लोगों में मौत होती है, अधिकांश अगर हम देखें तो अभी भी गरीबों में होती है। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये विश्व में हर जगह जहां भी गरीबी है, गरीबी का मतलब ये भी होता है कि उनकी जो रहने की व्यवस्था है, जो खाने खान पान की समस्या है, वो एक चीज है। और दूसरा है ये लोग जो स्वास्थ्य सेवा है उनसे भी उनको उनमें उनको लेने में या उसमें कठिनाई है। तो दोनों पहलू हैं। तो जैसा डॉक्टर सौम्या ने बताया कि अगर हम 5 मुख्य कारण देखें जिसके कारण गुप्त संक्रमण, सक्रिय संक्रमण या एक्टिव टीबी में हो जाता है, उसमें मुख्य कारण इंडिया में कुपोषण है, और खास तौर पे एडल्ट्स में या वयस्कों में कुपोषण भी एक समस्या है। हम ज्यादातर माताओं में और बच्चों में कुपोषण की बात करते हैं, बट इंडिया में अगर हम मेहनतकश लोग देखें उनमें भी कुपोषण है। तो इंडिया में दोनों समस्याएं हैं। कुछ जगह हमें अभी मोटापा की समस्या देखने में आ रही है, मगर अगर हम एक खास वर्ग को देखें तो उसमें कुपोषण अभी भी वो है। और करीब 18% महिलाएं और 16% जो पुरुष हैं, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में उसमें कुपोषण पाया गया। तो अगर हम इन आंकड़ों को परसेंटेज से अगर मिला के देखें, करीब 14 करोड़ लोग इंडिया में वयस्क कुपोषण का शिकार है। और क्योंकि इनमें हर कुपोषित व्यक्ति में टीबी होने की संभावना 3 से 4 गुना होती है, तो जो टोटल टीबी के हम देख रहे हैं करीब 30 लाख केसेस में, 1/3 से लेके आधे तक कुपोषण की वजह से ही हो रहे हैं। तो अगर हम एक सामाजिक पृष्ठभूमि में देखें तो टीबी का रोकथाम, जैसे मैंने कहा कि हमारी इम्यूनिटी उसमें मदद करती है, और कुपोषण एक मेन कारण है जो इम्यूनिटी के कमजोर होने का। तो अगर सामाजिक तरीके से जो भी हम करें, चाहे वो खान पान की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार का समस्या हो, अगर पोषण का स्तर बढ़ेगा तो टीबी की समस्या हम आधी तक कम कर सकते हैं। और ये सुनने में थोड़ा लगेगा कि इसका कोई प्रमाण है कि नहीं, इसमें प्रमाण आपको यूरोप के देशों में टीबी कई गुना ज्यादा प्रचलित थी, मगर जैसे जैसे वहां सामाजिक स्तर बढ़ा, खाने पोषण का स्तर बढ़ा, वहां टीबी अपने आप कम होती गई। और 1950 में जब टीबी की ड्रग्स आई तो उसमें काफी व्यापक असर पड़ा। तो ये टीबी की जो समस्या है, एक तरफ से तो जो हमारे समाज में, जैसा आपने बताया, गरीबी के साथ कुपोषण जड़ा हुआ है, कई लोगों के दिमाग में भ्रांतियां भी होती है पोषण के बारे में, वो एक अलग चीज है। और दूसरे नंबर में इंडिया में डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का एक टीबी से जुड़ाव है। स्मोकिंग और अल्कोहल, धूम्रपान और अल्कोहल के सेवन से भी एक रिस्क फैक्टर है। तो हम लोगों ने जो झारखंड में शोध किया उसमें ये था कि अगर हम ये पोषण की समस्या को हम लोग एड्रेस करते हैं, उसको हम जो आमतौर पे पोषण में इंडिया में अनाज जो है वो पीडीएस के थ्रू मिलता है, मगर उसमें दालों का अभी प्रोविजन नहीं है। और स्पेसिफिकली शाकाहारी लोगों में जब तक आप दाल नहीं देते तब तक ये बैलेंस्ड डाइट नहीं बनती है, और उसमें फिर प्रोटीन का इम्यूनिटी से एक रिश्ता है। तो हम लोगों ने 3,000 हाउसहोल्ड्स में, मतलब 3,000 परिवारों में, जो जिनमें टीबी के, लंग टीबी के मरीज थे, फेफड़े की टीबी के मरीज थे, जिनके संक्रमण था, उन्हीं के घर वालों में शोध कार्य किया करीब 3 साल तक, कि जो भी और चीजें उनको मिल रही हैं, चाहे वो बीसीजी का टीका है बच्चों को, चाहे वो गुप्त टीबी का संक्रमण की दवा है, उनमें हम लोगों ने साथ में एडिशनल चावल और एडिशनल दाल और मल्टीविटामिन टैबलेट्स दी, और उनको हमने देखा अगले 2 साल तक कि इन पे क्या असर पड़ता है। तो जिन परिवारों में, दो दो परिवार के तो बनाए गए थे ग्रुप, एक में ये एडिशनल चीज दी गई और एक में जो नॉर्मल उनका खान पान था वो। तो जिनमें हमने ये एडिशनल चावल और दाल और मल्टीविटामिन दिए, उसमें 40 से 50% तक सक्रिय टीबी की दर कम हो गई। तो उसमें हम लोगों ने ये, और ये लास्ट ईयर हम लोगों ने ये एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया, इसके ऊपर काफी अभी प्रतिक्रिया भी हो रही है। तो पोषण अगर एक हमारे यहाँ एक मुद्दा है जो टीबी को बढ़ा रहा है, अगर हम उसको एक सामाजिक रूप में हम इसको एड्रेस करते हैं, और मैं सब फिर भी कहना चाहूंगा कि टीबी कोई एक व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, यह हमारी सामाजिक समस्या है, और हम अगर मिलजुल के इसको समझेंगे, इसकी पृष्ठभूमि को, तो हम इसमें बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने देखा कि डायबिटीज के जो मरीज थे, खासतौर पर ग्रामीण एरिया में, उनको उचित पूरा कंट्रोल डायबिटीज का वो नहीं कर पा रहे थे, वो भी एक मृत्यु का कारण बन रहा था मरीजों में। तो कुछ चीजें हम लोगों ने, जो पेशेंट्स की मृत्यु हुई उसमें से हम लोग शोध कार्य में से कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे सामने आए, वो ये था कि अगर हम टीबी की जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है, जो बलगम की जांच है, उसको करते हैं, बट साथ साथ अगर हम एक पूरे पेशेंट की जांच अगर ठीक तरीके से होती है कि क्या ये चलने फिरने में सक्षम है, क्या इसको सांस की तकलीफ तो नहीं है, इसका बीपी कम तो नहीं है, इसके खून की कमी तो नहीं है, ये जांचें भी हमने अपने मरीजों में करी थी, और जब उनको हम लोगों ने पाया कि बहुत कमजोर है वजन के हिसाब से, या इसको खून की कमी है, जब इस तरह का हम लोगों ने एक उसको रेफरल करने की कोशिश की, तो इससे मृत्यु दर भी हमारे जो पेशेंट्स थे उसमें 35% कम हुई, जो और प्रोग्राम में पेशेंट्स है उसके हिसाब से। दोनों चीजों का मैं कहना चाहूंगा, रोकथाम के लिए अगर हम रोकथाम करने की कोशिश करें टीबी की, तो क्या चीजें हैं जो हमारे समाज में इम्यूनिटी को कम कर रही हैं, चाहे वो कुपोषण हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कुछ पेशेंट्स में एचआईवी की समस्या हो, क्या हम उसको सुधार सकते हैं, और अगर टीबी के मरीज की मृत्यु हो रही है, तो क्या हम स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से जरा देख सकते हैं कि क्या जो पेशेंट है उसको पहले 2 महीने में खासतौर पे बहुत उनको खतरा रहता है मृत्यु का, तो क्या हम बेहतर उनका थोड़ा सा देखभाल कर सकते हैं, क्या हर पेशेंट जो अति कुपोषित है, हमारे यहाँ जो पेशेंट्स थे उनका वजन बहुत कम था, औसत वजन करीब 38 किलो महिलाओं में और 42 पुरुषों में था, तो वो काफी कमजोर थे, तो उनको हमको अगर दोबारा काम करने के लिए सक्षम बनाना है तो भी उनका वजन बढ़ाना होगा, तो जो खाने का हम लोगों ने पेशेंट्स में दिया था 10 किलो का फूड बास्केट, वो क्या हम पूरे सारे मरीजों को इंडिया में दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर सौम्य ने कहा कि ₹500 उनको आर्थिक सहायता मिल रही है, मगर अगर ये सहायता भी मिल जाए, जिसके लिए आजकल एक प्रोग्राम चला है बट वो यूनिवर्सल अभी भी नहीं हुआ है, जो लोग सामने आते हैं मदद करने के लिए वो है, तो अगर इस तरह की बेहतर थोड़ी सी जो दवाएं हैं उसके साथ साथ ये सामाजिक सपोर्ट और न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल जाए, तो मुझे लगता है कि हम अपने जो अभी उसमें काफी हद तक हम सुधार ला पाएंगे, और खासतौर पे उनके लिए जिनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है।
1: जी, अब हम डॉक्टर रजत गोयल से बात करते हैं। डॉक्टर रजत, टीबी के फैल को रोकने के लिए टीबी का टीका यानी वैक्सीन बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्या ऐसा वैक्सीन है जो टीबी से बचा सकता है, और अगर नहीं है तो उसके आविष्कार में हम कहाँ तक पहुंचे हैं?
5: आरती जी नमस्कार, पहले आपको और आपके श्रोताओं को। एटलीस्ट आज हम वैक्सीन की बात करते हैं, ये एक वर्ड हो गया है जिसकी डिमांड आने लगी है, और मैं ये कह सकता हूँ कि 100 सालों के बाद टीबी की बीमारी के बारे में आपने सब विशेषज्ञों से सुना, इतने सालों के बाद शायद मैं एक वर्ड कह सकता हूँ जो हम बहुत सुनते हैं आजकल रेडियो पे, कि शायद हमारे लिए वैक्सीन के अच्छे दिन आ रहे हैं। लेकिन जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो सिर्फ वैक्सीन बनाना जरूरी नहीं है, वैक्सीन मिलना जरूरी है, कम दाम पे मिलना जरूरी है, और उस वैक्सीन को लेना भी जरूरी है। तो जो जब आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो जब भी हमको ये सारी चीजों के ऊपर नजरअंदाज करना चाहिए। आप हम लोग सारी दुनिया और हिंदुस्तान में ये COVID-19 की महामारी हुई, आप हम सब उससे जानकार हैं, और उसमें जैसे टीबी के बारे में आज आपने सुना, ये एक ऐसी बीमारी है ये सब एज ग्रुप में होती है, ये किसी को नहीं छोड़ती, और इसीलिए कोई भी वैक्सीन अगर बने तो वो सारी एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। दूसरा, आपने वही बीमारी में देखा, कोविड में देखा, कि कभी भी अगर टीका बने तो वो सारी जो भारत सरकार की सेवाएं हैं उसमें उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो प्रारंभिक हो, मध्यवर्ती हो, या उच्च स्तर पे जो सेवाएं मिलती हैं।
1: जी
5: तो फॉर्चुनेटली हमारा जो अभी प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का, भारत सरकार का जो आयुष्मान भारत है, वो इसके ऊपर अब बढ़ोतरी कर रहा है। अब हमारी जो वैक्सीन हैं वो सारे उम्र के लोगों के लिए दी जाती हैं, और कैसे कैसे सारी जहां जहां पे सेवाएं प्रदान होती हैं वहां पर वो वैक्सीन मिले, तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी स्पेशली टीबी को लेकर होता है, और वैसे कोई भी नई बीमारी को लेकर होता है, कि जब भी अगर वैक्सीन बने, जो वैक्सीन बनाने वाला होता है उसको ये भी जरूरी होता है, और जो वैक्सीन देता है जैसे सरकार देती है प्रोग्राम के लिए, तो क्या वो सस्ती बन रही है, उसकी डिमांड कितनी है, कौन लेगा, उसको कैसे देंगे और किसको सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट होगा। जैसे आपने कोविड में देखा और आज आपने विशेषज्ञों को भी सुना कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो जब हम वैक्सीन बनाए भी तो टीबी के पेशेंट को, खासकर उनको जिनको और बीमारियां हों, चाहे वो पोषण कम पोषण की बात हो या डायबिटीज की बात हो, तो उनको भी देना और उनको पहले देना जरूरी होता है। और ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं सोचने के लिए, ताकि जब भी भारत सरकार कोई भी प्रोग्राम रोल आउट करे तो वैक्सीन पहले उनको मिले जिससे उनको सबसे ज्यादा फायदा हो, और उसके ऊपर भी सरकार बहुत सारा काम कर रही है। अब आते हैं वैक्सीन पर से, जो आपका प्राइमरी सवाल था कि टीका बन रहा है कि नहीं बन, तो हम सब जानते हैं कि हम बच्चे जब पैदा होते हैं तो एक BCG की वैक्सीन दी जाती है। तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए हैं दुनिया भर में जिसमें दिखाया गया है कि शायद स्पेशली वो लोग जिनको बीमारियों का बहुत हाई रिस्क हो, या जिनको बाकी बीमारियां हों और उससे टीबी से बहुत ज्यादा पीड़ित हों, तो भारत सरकार ने एक नया प्रोग्राम निकाला है जिसको हम BCG रीवैक्सीनेशन प्रोग्राम
1: जी
5: बना रहे हैं और वो सबको दी जा रही है। लेकिन इसके अलावा मैं एटलीस्ट इतना खुश हूं कि आज की तारीख में 3 या 4 ऐसी वैक्सीन के ऊपर काम किया जा रहा है जिससे शायद हमें अब इतने सालों के बाद एक होप है कि टीबी की वैक्सीन बन सकती है, पर आने वाले 3 या 4 सालों में हमारे लिए इसका बहुत शायद हम देखें कि ये बन जाए और ये इंट्रोड्यूस हो जाए हमारे प्रोग्राम में। और हमने ये भी देखा, जैसे कोविड में देखा, कि आत्मनिर्भर भारत में हमारे लिए खुद हमारे देश में अगर वैक्सीन बने और वो हमारे जो पॉपुलेशन है उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस करे, तो उसके लिए हमको ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ता है। तो 3 ऐसी कंपनियां हैं भारत में जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, एक इम्यूनोवैक एक वैक्सीन है, एक BPM करके एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, और एक MTBVAC है जो एक एक नई वैक्सीन है जिसके ऊपर बहुत काम किया जा रहा है और बहुत लेट स्टेज में है। हमारी जो संस्था है वो ग्लोबली इसके ऊपर काम कर रही है, जो काफी सारे विशेषज्ञ आज जो हैं जो आपके प्रोग्राम में भी हैं वो भी इसके सपोर्टिव हैं। तो अगर ये जो जांच चल रही है और जिस जितनी सफलता अभी तक दुनिया भर में मिली है, जब जो हिंदुस्तान में जो जांच चल रही है उसके ऊपर वही रिजल्ट आए जो हमें बाकी जगह मिल रहे हैं, तो वी आर वेरी होपफुल कि बहुत जल्दी एक टीबी की वैक्सीन हम सबको मिलेगी, हम सारी उम्र के लोगों को मिलेगी, हम सबको बहुत फर्क पड़ेगा। और जो हमारा एक विजन है टीबी मुक्त भारत और या WHO का जो प्रोग्राम है टू एंड टीबी कैंपेन, वो बहुत जल्दी सफल होगा।
1: शुक्रिया डॉक्टर गोयल। इस उम्मीद पे हम सभी कायम हैं, पर शायद बचाव अभी अभी भी बहुत जरूरी है।

था, मेरे पेट में टीवी था क्योंकि मेरे पेट में पेन होना शुरू हुआ था, तो मैंने घर वालों को बताया था कि मेरे पेट में ना बहुत पेन हो रहे हैं। तो मेरे घर वाले बोल रहे हैं, अक्सर होता है खाली पेट में होने से होता होगा, स्कूल टाइम पे जब मैं था तो कह रहा है कि तुमने खाना पीना नहीं खाया होगा टाइम पे, इसलिए पेट में दर्द हो रहा होगा। फिर मैंने मम्मी को बोला कि नहीं, ये 1 महीने की बात नहीं है, ये मुझे काफ़ी टाइम से मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा और एक ही जगह मेरे को पेन हो रहा था, खांसी होने लगा था बहुत ज़्यादा, और जब मेरी खांसी होती थी ब्लडिंग आना शुरू हो गया था। तो मैंने घर वालों को भी बताया था, मम्मी कह रही है कि नॉर्मल है, खांसी होता है तो शायद ज़्यादा खांसने, शायद ब्लडिंग आ जाता होगा कभी कभी, तो थोड़ा धीरे खांसना। फिर डॉक्टर से दवाई ले लेते थे हम, पेन वेन थोड़ा ठीक हो जाता था। धीरे धीरे मेरे बॉडी क्या हो गया, सूखने लग गया, पतला सा होने लग गया मेरे बॉडी। फिर मैं अचानक से बीमार पड़ गया था और काफ़ी फीवर्स होने लग गए थे, मेरे फीवर उतर ही नहीं रहे थे, 5-6 दिन कंटिन्यू का फीवर था। मेरा ब्लड टेस्ट करा ले, सब नॉर्मल था, और मैंने एक्सरे कराया था उसमें भी नॉर्मल था, अल्ट्रासाउंड भी कराया उसमें भी कुछ नहीं था। फिर किसी ने सजेशन किया, एक भैया थे, उन्होंने बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे होते हैं, एक बार आप गवर्नमेंट पे जाके देखो, वहाँ पे एक बार इलाज करा के देखो क्या बोलते हैं वहाँ पर। फिर मैं जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, मैंने डॉक्टर से मिला, तो उन्होंने मुझे पहले 1 दिन की दवाई दी, कि 1-2 दिन के पहले दवाई दिया, कह रहा ये दवाई खा के देखो, इससे आराम होता है तो ठीक, नहीं होता तो आप दोबारा आना हमारे पास। तो जब मैंने दवाई लिया तो मेरा फीवर नहीं उतरा था, फिर मैं दोबारा से हॉस्पिटल गया, फिर उन्होंने मुझे सीटी स्कैन लिख के दिया कि आप करवा लो एक बार, क्योंकि मैंने अल्ट्रासाउंड और जो एक्सरे कराया था उन्होंने देखा उसमें कुछ था नहीं, उसके बाद हम क्या डिसीजन लेते हैं उसके बाद पता चलता है क्या है आपको। फिर सब सीटी स्कैन करा के लेके आया मैं, तो फिर जब मैं ऑपोजिट डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर टीवी का लक्षण लिखा हुआ था और साथ में स्टोन भी था दोनों साइड में, छोटे छोटे थे, पर डॉक्टर बोल रहे कि आपको टीवी है। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था डॉक्टर के पास ही, और बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था मैं अपने आप को। तो फिर डॉक्टर मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या आपको घर में किसी को टीवी हुआ है, या पहली बार आपको टीवी हुआ है, या कभी हुआ हो आपको, या घर में किसी को हुआ कि इसके थ्रू आपको फैला हो। तो मैंने कहा नहीं, घर में किसी को नहीं है। नर्वस मैं डर गया था क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये लक्षण हो सकता है, क्योंकि मैं खाना ठीक ठाक खा ही लेता था मैं, हाँ आई नो मैं चटपटा बहुत ज़्यादा खाता था जो था। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि टीवी की नॉर्मल है, हो जाता है किसी को भी, पता नहीं चलता, कभी भी किसी को भी हो जाता है, तो इसमें इतनी डरने वाली बात नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप सामने डिपार्टमेंट है वहाँ पर, आप टीवी के डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे एक बार अपना दिखा दो रिपोर्ट ही सारे। फिर मैंने उनको दिखाया तो कह रहा है नहीं इसमें डरो मत, जितना आप डरोगे उतना आपको ही हानि होगा, क्योंकि आप उतने ही और बीमार होते जाओगे, तो आप सोचो मत कि आपको टीवी है, बस जैसे जैसे हम स्टेप बताते हैं आपको इलाज का आप वैसे वैसे करते जाओ। सब कुछ करता था, खेलना कूदना घूमना सब कुछ करता था, पर ये कैसे हो सकता है, मुझे मेरे माइंड में यही चल रहा था बार बार कि सब तो ठीक है, काम भी अच्छा कर रहा हूँ मैं, स्कूल भी टाइम पे जा रहा हूँ, भारी चीज़ें भी आराम से उठा ले रहा हूँ, तो मुझे ये कैसे हो सकता है। तो फिर डॉक्टर ने जब मुझे बोला कि पेन होगा क्योंकि पेट में है आपका टीवी तो पेन होगा, तो अब डरो मत, तो मैं डरा नहीं, उन्होंने जो जो स्टेप बताया मैंने बस उसको फॉलो किया। जैसे जैसे उन्होंने बोला कि ये इलाज करना है आपको इस टाइम पे, या ब्लड टेस्ट करवाना है, या बलगम टेस्ट कराना है, हर टेस्ट का मैं समय समय पर किया। जब उन्होंने सारा टेस्ट करने के बाद मुझे सजेशन किया कि जहाँ आप रहते हो उस एरिया में भी एक डिस्पेंसरी होता है, तो उस डिस्पेंसरी में आप ये

जो पत्ता था ग्रीन कलर का, उसको आप एक पत्ते में से तीन गोली आपको एक टाइम पे लेना, आपको टाइम फिक्स करना है। मैंने लिया था दोपहर का टाइम, क्योंकि उस टाइम मैं कॉलेज से आ जाता था मैं, तो मेरा कंटिन्यू फिर मेरा दवाई चला, फिर कंटिन्यू मेरा 6 महीने दवाई चला, उसके बाद फिर मैं ठीक हो गया। तो उन्होंने फिर ठीक होने के बाद मुझे बुलाया था, जब 6 महीने मेरे खत्म होने के बाद मैं लास्ट टाइम उनके पास गया, फिर उन्होंने एक और एक्सरा करने के लिए बोला लास्ट टेस्ट के लिए, तो मैंने वो एक्सरा कराया, तो उन्होंने वो रिपोर्ट को चेक वेक किया, कह रहा नॉर्मल है।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरजे शिवानी और लेकर आई हूं आपके लिए एक और कहानी जिसका शीर्षक है माँ और जिसको लिखा है सरिता गुप्ता जी ने। मुझे याद नहीं कि बचपन में सिर्फ मैं कभी स्कूल में इस वजह से देर तक रुकी हूं कि बाहर बारिश हो रही है। मैं भीगती हुई ही घर पहुंच जाती थी और तब बारिश में भीगने का मतलब होता था घर पर अजवाइन वाले गरम तेल की मालिश, और यह विदाउट फेल होता था। और फिर जब घर से दूर रहने लगी तो धीरे धीरे बारिश में भीगना कम होते होते बंद ही हो गया। यूं नहीं कि बाद में जिंदगी में लोग नहीं थे, लेकिन किसी के दिमाग में कभी नहीं आया कि बारिश में भीगी लड़की के तलवों पर गरम सरसों के तेल को मल दिया जाए, कभी नहीं। ऐसी सैकड़ों चीजें जो माँ हमेशा करती थी, माँ से दूर होने के बाद किसी ने नहीं की। बचपन में खाना मनपसंद ना हो तो माँ 10 ऑप्शन देती थी। अच्छा, घी कुड़ की रोटी खा लो। अच्छा, आलू की सब्जी बना देती हूँ। माँ नखरे सहती थी, तभी नखरे दिखाते भी थे, लेकिन बाद में किसी ने लाड लड़ाया ही नहीं। मैं अपने आप ही सारी सब्जियां खाने लगी। मेरी जिंदगी में माँ सिर्फ एक ही है, दोबारा कोई माँ नहीं आई। हालांकि बड़ी होकर मैं जरूर माँ बन गई। पति कब छोटा बच्चा हो जाता है, कब उस पर मोहब्बत से ज्यादा दुलार बरसने लगता है, पता ही नहीं चलता। उनके सर पर तेल भी लग जाता है, यह परवाह भी होने लगती है कि उनका फेवरेट खाना बनाऊं। सब नखरे उठाए जाने लगते हैं। लड़कों की जिंदगी में कई माएं आती हैं, बहन भी माँ हो ही जाती है, बेटियां भी एक उम्र के बाद बूढ़े पिता की माँ बन ही जाती है, पर लड़कियों के पास सिर्फ एक ही माँ होती है। बड़े होने के बाद दोबारा कोई माँ नहीं मिलती, वह लाड़ दुलार नखरे दोबारा कभी नहीं आते। सच है ना, लड़कियों को माँ जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलती है। तमाम मुश्किलों का हल है मेरी माँ, तमाम मुश्किलों का हल है मेरी माँ, मेरी हर चोट का मरहम है मेरी माँ। अब अंत में आपसे मैं विदा लेती हूँ और आगे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। जय हिंद, जय भारत।

खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 705641301 पा फोन।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
4: जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, थोड़े घर के काम में हाथ बटाना भी सीख ले, के करेगी इतना पढ़ के।
5: ITI में दाखिला लूंगी और फिर एक अच्छी नौकरी करके अपने परिवार के सारे सपने पूरे करूंगी।
4: इतना आसान हो गया के?
5: माँ लगता है आपको पता नहीं कि महरी हरियाणा की ITI में दाखिले शुरू हो गए हैं, जहाँ पे 8वीं 10वीं और 12वीं पास युवा राज्य की 197 सरकारी और 180 प्राइवेट ITI के एक और दो साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। इन ITIs में 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
4: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।
6: FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। हर बार सुनाता हूं आपको मैं एक से लेकर एक बढ़कर कहानियां, कभी आपके दिलों में दस्तक देने की कोशिश करता हूं, कभी गुदगुदाने की कोशिश करता हूं, और कभी मेरा प्रयास होता है कि आपके दिल के अंदर छुपी हुई उस हंसी को आपके लबों पर लेकर आऊं। तो दोस्तों, लघु कथाओं की श्रृंखला के बीच में आप मुझसे कई बार कई प्रकार की कहानियां सुन चुके हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। आज लेकिन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये थोड़ी सी अलग हटकर कहानी है। इस कहानी के बीच में आप मुझसे सुनेंगे कि मक्खनबाजी इस तरह से भी हो सकती है। अब थोड़ा सा तो आप भी गौर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे भी ऐसी आज किस मक्खनबाज की बात नरेश शर्मा लेकर आए हैं। तो आइए सीधा चलते हैं उस मक्खनबाज के पास और सुनते हैं उसकी हरकतें। तो हुआ यूं साहब कि एक कर्मचारी कंपनी के सभी कामों से बचता था, लेकिन बॉस को मक्खन लगाने में बड़ा माहिर था। वो बॉस के आदेश के अनुसार सभी काम करता था, ऑफिशियली काम को छोड़कर ना, और भी बॉस के जितने निजी काम हुआ करते, जैसे उनके बेटे की कॉलेज की फीस जमा करना, बेटी की डांस कॉस्ट्यूम खरीदना, उनकी कार की सर्विस कराना, उनके बेटे का प्रोजेक्ट पूरा करना, यानी लगभग सब कुछ करता था। इसलिए जाहिर था कि वो बॉस का पसंदीदा था, उसे सभी प्रोत्साहन और इंक्रीमेंट समय से ही मिल जाते थे। और दूसरी तरफ बाकी कर्मचारी ऑफिशियली काम पूरा करने पर भी बॉस की डांट ही खाते रहते थे। एक दिन अचानक बॉस की मां के निधन की खबर मिली। सारे कर्मचारी बहुत उदास चेहरे के साथ उनके घर भागे, और हैरानी की बात यह कि ऐसे वक्त में वो बंदा बॉस के घर के आसपास नहीं दिख रहा था, जिसके बारे में हर कोई अलग अलग कयास लगा रहा था कि आज वो आदमी गैरहाजिर कैसे है इस मौके पर। अब अन्य कर्मचारियों ने माल्यार्पण से सुसज्जित वाहन की व्यवस्था की और बॉस की मां को शमशान ले जाया गया। लेकिन जब सब शवदाह गृह पहुंचे तो पहले से ही 16 शव बिजली से चलने के लिए कतार में भरे थे। प्रत्येक शरीर को जलने में लगभग एक घंटा लग रहा था, यानी कि कुल मिलाकर सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार संभव नहीं था। बॉस का चेहरा लाल हो रखा था, बाकी सब लोग बहुत परेशान थे। अचानक कतार में पड़े 16 शव में से दूसरा शव उठ के बैठ गया। वहां उपस्थित जितने भी लोग थे ना, सब डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। बाद में पूर्ण आश्चर्य के साथ पता चला कि ये कोई शव नहीं था, ये तो वही बंदा था। उसने तुरंत बॉस को बताया, श्रीमान माफी चाहूंगा, सुबह से आपके घर नहीं आ पाया, क्योंकि जैसे ही आपकी माताजी के देहांत का समाचार सुना और देखा कि सब आपके घर की तरफ भाग रहे हैं, तो ख्याल आया कि पहले यहाँ का भी इंतजाम देख लूं, और देखा तो पाया कि जब आप बॉडी लेकर आएंगे तो शाम तक मुश्किल से ही आपका नंबर आ पाएगा, तो आज बस आपकी खातिर सुबह से ही आपकी माताजी का नंबर लगा दिया। सर सुबह 8 बजे से ही लाश बनकर लेटा हुआ हूं। सब उसकी प्रतिबद्धता को देख कर ना दंग रह गए, और बॉस कभी उसको बड़े प्यार से देखता और कभी बाकी कर्मचारियों को खा जाने वाली निगाहों से। क्यों, कभी देखा है आपने ऐसा मक्खनबाज? और कैसी लगी आपको हमारी आज की मक्खनबाज पेशकश? हमें हमारे दूरभाष नंबर 7056413010 पर जरूर बताएं। जल्द ही मिलता हूं आपको एक और नई लघु कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: तुझु बोजान नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूँ।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: दोस्तों खुश आमदीद, सिर्फ तुम्हारे लिए। जैसे लौटता है कोई मखमली मौसम और हरा होता है जंगल, जैसे पूनम का चांद आकाश से उतर आया हो, जैसे बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हो, जैसे इस खामोश वादी में फरिश्तों की बारात आई हो, जैसे इस वीरानी के पत्थर आज कुछ कहना चाह रहे हैं, जैसे यहां ये पागल हवाएं अपनी फरियाद लिए खुद से मुखातिब हैं, वैसे ही जब जब दिल हमारा धड़कता है तुम हमारी यादों में शामिल हो जाते हो।

फिर छू ले उसे। मैं तुम्हारे कदमों को नाप लूं अपनी उंगलियों से, कुछ फासले रहने दूं और कुछ मिटा दूं। शायद ये बचे फासले मुझे तुम्हारे करीब आने को कहें, ताकि मैं इन्हें अपना कर आने वाले कल के सपनों को साकार कर सकूं। तुम्हारा आंचल मखमली उम्मीदों से भर दूं। आओ आओ चले दूर तक, वहां तक जहां जमीन और आसमान का मिलन हो अपनी तमन्नाओं के साथ।

बेवजह परेशान यूं ही बिखरा बिखरा अपने अतीत को याद करता, अपनी परछाई से कई बार सवाल करता, रूहों के सफर के रहस्य को जानने की कोशिश करता। वक्त से पहले जो लोग चले जाते हैं उनके अपनों के दुख में शामिल होना, कुछ ऐसे एहसासात, कुछ ऐसे जज्बात जो मेरे साए को घेर लेते हैं, जकड़ लेते हैं और नोच लेते हैं बेवजह।

क्यों न लड़खड़ाएं। इन अंधेरों में मैं तुम्हें संभाल लूं और तुम मुझे संभाल लेना। दूर तक चले हम साथ साथ, उम्मीदों के चिराग रोशन करें ताकि एक नई सुनहरी सुबह हमें अपनी बाहों में समेट ले। भूल जाएं बीते मौसम की यादों को जब तुम तन्हा थी और मैं भटकता मुसाफिर। क्यों न इस मौसम में याद करें ढलती शामों को, सुरमई उजालों को, रात की नर्म मिजाजी को, तुम्हारी मासूम अदाओं को।

तुम्हारे मेरे दरमियान इन फासलों को नजदीकियों में तब्दील करने की कोशिश करें, फिर से इस खामोश पानी में पत्थर फेंकें ताकि इन लहरों का मिलन साहिलों से हो। आओ इन बादलों को अपनी मुट्ठी में कैद करें और फिर से पहले ही की तरह बारिश में भीग जाएं। मैं तुम्हारी हथेली में अपना अक्स ढूंढ लूं ताकि अपनी बिखरी सूरत संवार सकूं। आओ हम दोनों आज ये अहद करें कि नहीं बिछड़ेंगे फिर से कभी, और तुम्हारे मेरे दरमियान इन फासलों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहें।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: आपने ट्यून इन किया है रेडियो इतस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका मस्ती वाला रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। लेके आया हूं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों का एक नया एपिसोड। इस शो में मेरा साथ देंगे आरजे शिवानी।
1: नमस्कार, आप सभी सुनने वालों का स्वागत कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादों में। मैं आरजे शिवानी इस कार्यक्रम के सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: आज के इस शो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऐसे जोड़ी की जिन्होंने हमारे दिलों में खास जगह बनाई है अपने दमदार संगीत से। जानेंगे उनके जिंदगी के बारे में और हम सुनाएंगे उनके बेहतरीन गाने प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों के सफर में। आज हम बात करेंगे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने अपने वरिष्ठ संगीतकारों की खिदमत की, उनका आशीर्वाद पाया, उन्हीं को टक्कर दी और फिर उन्हें पीछे छोड़ते हुए सभी स्थापित और ताकतवर फिल्म निर्माताओं को अपना मुरीद बना लिया। बॉबी, हीरो, सरगम, एक दूजे के लिए जैसी प्रेम कहानियों से इस जोड़ी का जादू युवाओं के सिर चढ़कर बोला। लक्ष्मीकांत लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया था, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। यह अलग बात थी कि लक्ष्मीकांत का बचपन विले पार्ले मुंबई का एक उपनगर की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया था। लक्ष्मी और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मी मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 सालों तक हुसैन अली से फिर बालमुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन का प्रशिक्षण लिया। बाद में हिंदी फिल्म की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुसनलाल भगत राम के हुसनलाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे। इस प्रोग्राम में हम इनके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। आइए सुनते हैं इनका एक बहुत ही संगीत भरा गाना फिल्म एक दूजे के लिए से, 16 बरस की भाली उम्र।

0: 40 और 50 के दशक में हुसैनलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायकों ने भी उनकी शागिर्दी की। इस जोड़ी के चांद 1944 में बनाए एक दिल के टुकड़े हजार हुए गाने का कमाल यह था कि इसके बाद दर्द भरे गानों का दौर ही शुरू हो गया था। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीत कार्यक्रम के दौरान हुई। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और 20वीं सदी के महान वायलिन वादक यहूदी मेनोहिन के भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया।
1: साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। वादकों को बहुत कम पैसे मिलते थे, इसलिए उन्होंने चेन्नई जाकर किस्मत आजमाई, मगर वहां भी हालत ऐसी ही थी। सो दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। वो फिल्मों में संगीतकार नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना वियना जाकर किसी सिंफनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया और दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो सपना सच करेंगे। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना जिसका संगीत इस महान जोड़ी ने दिया है और गाने के बोल है वो है जरा खफा खफा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और आज मैं आपके साथ हूं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों में। और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल अलग अलग सोच रखते थे। लक्ष्मीकांत संगीतकार बनना चाहते थे और प्यारेलाल बाहर जाना चाहते थे एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए। दोनों के सपने टकराए, उनके रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, मगर दोस्ती ने जोर मारा तो लक्ष्मीकांत जिद पर अट गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देख प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की यह दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में रफी किशोर के गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा की तरह 3.5 दशक तक अखंड रहे।
1: लक्ष्मी प्यारे वादक से सहायक बने और फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। आखिर 1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें खूब समझाया कि छोटे बजट की फिल्म उनके करियर को खराब कर सकती है, मगर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मी प्यारे की गाड़ी चल निकली। 1964 में इस जोड़ी को राजश्री प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा रहे थे। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी और आखिर बाजी मारे दोस्ती ने। इस टीम ने अपने गुरु को पीछे छोड़ दिया था।
0: मामला यही नहीं रुका, जो मनोज कुमार और मनमोहन देसाई कल्याण जी आनंद जी को अपने फिल्मों का संगीतकार बनाते रहे, उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अपनी फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी सौंप दी। संगीत के जानकार रहे शोमैन राज कपूर ने भी जयकिशन के निधन के बाद बॉबी से लक्ष्मी प्यारे को मौका दिया और उनका साथ प्रेम रोग तक चलता रहा। आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो इस संगीतकार जोड़ी की जिंदगी के साथ जुड़ा है और इन्होंने इस गाने का संगीत भी दिया है। सुनते हैं फिल्म दोस्ताना से सलामत रहे दोस्ताना हमारा।

0: सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादें और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। प्यारेलाल का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा। उनकी मां का देहांत बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उनके पिता पंडित रामप्रसाद जी ट्रम्पेट बजाते थे और चाहते थे कि प्यारेलाल वायलिन सीखे। पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, वे घर घर जाते थे जब कभी भी कहीं उन्हें बजाने का मौका मिलता और साथ में प्यारे को भी ले जाते। उनका मासूम चेहरा सबको आकर्षित करता था। एक बार पंडित जी उन्हें लता मंगेशकर के घर ले गए। लता जी प्यारे की वॉलिन वादन से इतनी खुश हुए कि उन्होंने उनको 500 रुपए का इनाम दिया, जो उस जमाने की बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वो घंटों वॉलिन का रियाज करते और अपनी मेहनत के दम पर उन्हें मुंबई के रंजीत स्टूडियो के ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिल गई, जहां उन्हें 85 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। अब उनके परिवार का पालन उन्हीं पैसों से होने लगा। उन्होंने एक रात्रि स्कूल में 7वें ग्रेड की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और 3 रुपए मासिक फीस उठा पाने की असमर्थता के चलते उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। मुश्किल हालातों ने भी उनके हौसले को कम नहीं किया। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। अपने संगीत के दम पर अपने लिए नाम कमाना और देश विदेश की यात्रा करना उनका सपना था।
1: प्यारेलाल जी ये कहते हैं, मैंने संगीत सीखने के लिए एक संगीत ग्रुप मदरिगल सिंगर ज्वाइन किया, पर वहां मुझे हिंदू होने के कारण स्टेज आदि पर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था। वो लोग पारसी और ईसाई वादकों को अधिक बढ़ावा देते थे, पर मुझे सीखना था तो मैंने सब कुछ सहकर वहां पे टिका रहा। पर मेरे पिता ये सब अधिकतर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने खुद गरीब बच्चों को मुफ्त में सिखाना शुरू किया और उसका जिम्मा उठाया, और वो उन्हें संगीतकार नौशाद साहब के घर भी ले जाया करते थे। करीब 1500 बच्चों को मेरे पिता ने तालीम दी। बहुत कम लोग होते हैं जो जरूरतमंदों को अपनी शिक्षा देते हैं और उनको सही रास्ते पर डाल देते हैं। आइए सुनते हैं हम एक बहुत ही मनमोहक गाना जिसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी ने दिया है, फिल्म एक दूजे के लिए, और गाने के बोल है तेरे मेरे बीच में।

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है रेडियो वितस्ता, उनके लिए मैं ये कह दूं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादें, और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। प्यारेलाल जी का असली नाम प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा है, जिनको प्यार से प्यारेलाल के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 3 सितंबर 1940 को गोरखपुर में हुआ था। इनकी कर्मभूमि मुंबई और कर्म क्षेत्र है संगीतकार। उन दिनों लक्ष्मीकांत पंडित हुसनलाल भगतराम के साथ काम करते थे। वो मुझसे 3 साल बड़े थे उम्र में। धीरे धीरे हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे, साथ बजाते और कभी कभी क्रिकेट भी खेलते और संगीत पर लंबी चर्चाएं करते। हमारे शौक और सपने एक जैसे होने के कारण हम बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। सी रामचंद्र जी ने एक बार मुझे बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ा काम देने वाला हूं। वो लक्ष्मी से पहले ही इस बारे में बात कर चुके थे। चेन्नई में हमने 2.5 साल साथ काम किया। फिल्म थी देवता, कलाकार थे जैमिनी गणेश, वैजंती माला और सावित्री, जिसके हमें 6,000 रुपए मिले थे। यह पहली बार था जब मैंने इतने पैसे एक साथ देखे। मैंने इन पैसों से अपने पिता के लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी, जिसकी कीमत 1200 रुपए थी।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को बेहतरीन गाने दिए। इनमें से कुछ हैं, सावन का महीना फिल्म मिलन, दिल विल प्यार व्यार फिल्म शागिर्द, बिंदिया चमकेगी फिल्म दो रास्ते, महंगाई मार गई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, डफली वाले फिल्म सरगम, तू मेरा हीरो है फिल्म हीरो, यशोदा का नंदलाला फिल्म संजोग, चिट्ठी आई है फिल्म नाम, 1 2 3 फिल्म तेजाब। आइए सुनाती हूँ इन्हीं का एक मनमोहक गाना, जो है महंगाई मार गई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से।

0: लक्ष्मीकांत का जन्म 3 नवंबर 1937 में हुआ था। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देना पड़ा। बचपन के दिनों से ही लक्ष्मीकांत का रुझान संगीत की ओर था और वो संगीतकार बनना चाहते थे। लक्ष्मीकांत ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से हासिल की। इस बीच घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्मीकांत ने संगीत समारोह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आगे जाकर वादी यंत्र मेंडोलिन बजाने की शिक्षा बाल मुकंद इंदौरकर से ली।
1: लक्ष्मीकांत पैरेलल की जोड़ी के रूप में फिल्म जगत में अपने संगीत का लोहा मनवाकर ही माने। अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के सहायक के रूप में उन्होंने फिल्म मदारी, सट्टा बाजार, छलिया और दिल भी तेरा हम भी तेरे जैसी फिल्मों में काम किया। इस जोड़ी पर संगीत का ऐसा जुनून था कि मशहूर निर्माता निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री की क्लासिकल फिल्म पारसमणि ने इनकी तकदीर ही बदल कर रख दी। फिर पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। सभी सुनने वालों के लिए पेश करते हैं इनका एक और मशहूर गाना, जिसके बोल है, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो।

आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में एक बार फिर, जिसका नाम है बॉलीवुड की सुनहरी यादें। इस सफर में मैं भारत सोपोरी आपके साथ हूं और मेरा साथ दे रही हैं आज शिवानी। और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। 70 और 80 के दशक में LP का सामान्य अर्थ लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड के अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी लिया जाता था। इसका एक सीधा मतलब ये था कि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड प्रदर्शित होते थे उनमें बहुतायत में LP ही बतौर संगीतकार मौजूद रहते थे। लक्ष्मीकांत कुदालकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के इस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया। वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसे हैं। इस बारे में कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी ही शायद अकेले ऐसे शीर्षस्थ संगीतकार जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में बाकी जोड़ियों को पीछे छोड़ दिया था। LP की तुलना में हम शंकर जयकिशन और कल्याण जी आनंद के सदाबहार युगल अवधान को याद कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मिलकर संगीत की साम्राज्य की ये प्रभावी तिकड़ी का फिल्म संगीत में अलग ही स्थान था। आइए हम ये चर्चा जारी रखते हैं और आपको सुनाते हैं इस मनमोहक जोड़ी का संगीत माय ये गाना जिसके बोल है हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जहां अपने आरंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के बतौर काम किया था। हंसता हुआ नूरानी चेहरा जैसे बेहद कर्ण प्रिय व ऑर्केस्ट्रेशन से सजे गीत से बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारसमणि 1963 से एकाएक मुख्य धारा में शामिल होने वाली यह संगीतकार जोड़ी जैसे प्रतिभा की प्रचुरता को अपने साथ तूफान की तरह लेकर आई। स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकार दूसरे बड़े संगीत निर्माताओं के यहाँ साज बजाने का काम भी करते थे। लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारेलाल जुबिन मेहता से बुरी तरह प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया एवं सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था।
1: इसी तरह मदन मोहन वाली हकीकत के गीत मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था मैं प्रयुक्त वायलिन प्यारे लाल ने ही बजाया था। आज भी संगीत के अधिकांश जानकारों के मुताबिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से बेहतर ऑर्केस्ट्रेशन की तमीज शायद ही किसी दूसरे संगीतकार के यहाँ मिलती है। आइए सुनते हैं इनका वो गाना जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ था। सुनते हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा।

0: कि प्यारेलाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्यारेलाल के पिता रामप्रसाद एक बेहतरीन वायलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वायलिन एवं पाश्चात्य म्यूजिक के नोटेशन सीखने जाया करते थे। उन्होंने भरतपुर के महाराजा किशन सिंह महाराज के यहाँ बैंड में ट्रम्पेट भी बजाई है और पांचवें दशक की कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया है। वे व्यावसायिक रूप से उतने सफल संगीतकार नहीं हो सके, मगर अपने विलक्षण संगीत ज्ञान के चलते ज्यादातर संगीतकारों सी रामचंद्र, नौशाद एवं के दत्ता के यहाँ उनकी फिल्मी धुनों में बरसों तक ट्रम्पेट बजाया है। उन्हीं के संस्कारों और प्रभाव के चलते प्यारेलाल में एक बेहतरीन कंपोजर और ऑर्केस्ट्रा अरेंजर के गुण विकसित हो सके। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली एलपी की बनाई धुनों के माध्यम से बेहतर तरीके से दिखाई देती है। इसमें अतिरिक्त मिठास घोलने में उनकी शास्त्रीय संगीत पर मजबूत पकड़ और शास्त्रीय तालों का समुचित ज्ञान भी सहायता करता है। इसी के साथ सुनाते हैं इस मशहूर जोड़े का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत, जिसके बोल हैं पत्थर के सनम।
1: पत्थर

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादें और आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे थे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में। ये इस कार्यक्रम का अंतिम भाग है। ये कहा जाता है कि जब सारे दिग्गज संगीत निर्माता 60 के दशक के उत्तरार्ध में अधिक सफल तरीके से रुपेहले पर्दे पर सक्रिय थे, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शुरुआती काम दिलाने एवं स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित होने में मदद करने के लिए लता मंगेशकर ने अहम भूमिका निभाई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सार्थक अवधान की सूची भी शायद इसलिए बेहद लंबी होगी जिसमें सभी का जिक्र या नमोलेख कर पाना एक अध्याय की सीमा से परे की चीज लगती है। फिर ये मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि साधारण या विशुद्ध रूप से फ्लॉप किसी फिल्म में यदि लक्ष्मी प्यारे मौजूद हैं तो शर्तिया वहां एक गीत ऐसा अवश्य होगा जो ठीक ढंग से संगीत प्रेमियों के बीच में चर्चा में आया होगा।
1: यह भी संभव है कि उसकी लोकप्रियता रेडियो पर बजकर या रिकॉर्ड व कैसेटों की उल्लेखनीय बिक्री से पुख्ता तौर पर बनी होगी। इसी कारण वह गीत निश्चित ही अपनी फिल्मों की असफलता से निरपेक्ष रहते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत प्रतिभा के सामर्थ्य को व्यक्त करता रहा होगा। इसलिए हमें एलपी के संगीत पटल को पूरी तरह किसी फहरिस्त में बांधकर रख पाने में असमर्थ ही दिखाई देते हैं। फिर भी उनकी प्रतिभा का सबसे नायाब नमूना माने जाने वाली कुछ फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं जो एक अनूठा एलपी टाइप बनाती रही है।
0: इसके साथ ही इस प्रोग्राम का समय समाप्त हुआ चाहता है। इस प्रोग्राम का हम यही समापन करते हैं। दीजिए इजाजत, किसी और प्रोग्राम में आपके साथ फिर रूबरू होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: मुझे भी दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग, पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत एक बातचीत सुनिए डॉक्टर विवेक मंगोत्रा के साथ। आपकी बातचीत का विषय है बरसात के मौसम में लगने वाली आम बीमारियां, कारण और उपचार।
4: डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
5: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपसे बरसात में आम बीमारियां कौन कौन सी हैं।
5: बरसात में आम बीमारियां एक तो है, पहली है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको हिंदी में दस्त और उल्टियों बोलते हैं। फिर दूसरी है स्नेक बाइट
4: जी।
5: तीसरी मलेरिया, चौथी टाइफाइड और पांचवी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस
4: जी। तो ये जो आपने बताया ये बरसात के महीनों में ऐसी बीमारियां पाई जाती हैं।
5: हाँ जी, ये बरसात के महीनों में ज़्यादा पाई जाती हैं।
4: किस किस महीने में इस तरह की बीमारियां आम पाई जाती हैं?
5: ये जब बरसात का महीना स्टार्ट होता है तो उसी वक्त ये बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं
4: जी। जो आप मरीज देखते हैं अक्सर, जो आपने बताया, एक तो आपने बताया कि स्नेक बाइट के लोग यहाँ,
5: हाँ जी,
4: सांप जिनको डसते हैं उसके बाद आपके पास आते हैं,
5: हाँ जी।
4: और इसके अलावा आपने बताया कि ये जो एक्यूट जैसे डिहाइड्रेशन की बात आपने की, हाँ, या हेपेटाइटिस की बात आपने की,
5: हाँ जी।
4: इसके अलावा
5: मलेरिया हो गया, फिर टाइफाइड फीवर होता है जिसमें बुखार बहुत ज़्यादा तेज होता है, फिर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, उसके भी केसेस आते हैं हमारे पास।
4: अच्छा, ये जो अभी आपने बताया एक्यूट बुखार की बात होती है, तो ये ज़्यादा देर रहता है?
5: डिपेंड करता है, जिस पोस ज़्यादा कहना कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो तो फीवर कहना ज़्यादा कहना सबसाइड कर जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। जब सपोज कोई कॉम्प्लिकेशन है, ज़्यादा कहना सिवियर केस है, तो फिर फीवर ज़्यादा देर रहता है।
4: अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में भी इस तरह की बीमारियां पाई जाती हैं?
5: बच्चों में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे कनकटू हॉस्पिटल में हमारे पास बहुत केसेस आते हैं जिसमें उनको बच्चों को दस्त और उल्टियाँ हो जाती हैं और उनको साथ में कहना पानी की कमी हो जाती है। फिर हमें यहाँ पे हम उनको पूरा IV फ्लूइड्स वगैरह दे के ठीक करते हैं।
4: अच्छा, ये जो बुजुर्ग होते हैं,
5: हाँ जी,
4: उनमें आपने किस तरह की बीमारी देखी है आमतौर पे जब हम बरसात के मौसम का जिक्र कर रहे हैं?
5: जी, बरसात में बुजुर्गों में भी एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको दस्त और उल्टियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है और उनमें ज़्यादा कहना सीरियस होती है क्योंकि उनमें ज़्यादा कहना चांसेस होते हैं डिहाइड्रेशन होने के, और उसमें भी हम उनको ऐसे ही देखते हैं और जिस पोज कहना डिहाइड्रेशन हो तो उनको फ्लूइड्स वगैरह देते हैं।
4: तो शुरुआत कैसे होती है, अगर मान लीजिए डिहाइड्रेशन हो किसी आदमी को इस बरसात के मौसम में, तो क्या उसके लक्षण क्या होते हैं?
5: लक्षण जब वो आता है हमारे पास तो उसका जो उसके होंड के ना सूर्य जीव सूख रही होती है, और जब हम उसको कहना चेक करते हैं तो उसका जो कहना पल्स जो होती है, जो नब्ज बड़ी फास्ट चल रही होती है, और जो कहना ब्लड प्रेशर है उसका बड़ा कम होता है, तो उससे हमें थोड़ा होता है कि फिर उससे हम कहना प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि उसको क्या बीमारी थी, फिर वो हमें बताते हैं कि हम इनको 4-5 दिन से कहना दस्त है या उल्टी हैं या कहना पानी पच नहीं रहा है।
4: तो फर्स्ट एड जो होता है आपकी, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है
5: इसमें? सबसे पहले उसकी क्या हिस्ट्री लेते हैं हम, उसका क्या ना पल्स और क्या ना ब्लड प्रेशर क्या ना चेक करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम क्या ना ट्रीटमेंट देते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो वो ट्रीटमेंट है वो है इसका क्या फ्लूइड थेरेपी,
4: जी जी,
5: जिसमें फ्लूइड्स देते हैं हम, और फ्लूइड ही इसका मेन ट्रीटमेंट है। एंटीबायोटिक्स का इतना रोल नहीं है जितना क्या फ्लूइड का।
4: ये आपने बताया कि डिहाइड्रेशन की बात,
5: डिहाइड्रेशन,
4: और इसके साथ अगर हम बात करें मलेरिया की,
5: हाँ जी,
4: तो सेम प्रोसेस अपनाया जाता है।
5: मलेरिया में जो आता है, इसमें जो आता है हमारे पास मरीज, इसमें उसको मेन वो क्या फीवर होता है, फीवर फीवर होता है, फीवर फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स, जिसमें मरीज को बहुत ज्यादा कहना ठंड लगती है और मरीज कहना कांपता है। तो ऐसा फीवर जब हम हमारे पास आता है तो हम उसे मलेरिया का, हमें मलेरिया का कहना ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं
4: जी जी।
5: और इसके लिए मलेरिया का ब्लड का कहना टेस्ट होता है, जैसे सपोज कहना पॉजिटिव आए फिर पूरा कहना कंफर्म होता है कि मलेरिया है, फिर हम इसको पूरा जो एंटीबायोटिक और कहना क्लोरोक्वीन जो आती है जो ट्रीटमेंट होता है वो देते हैं।
4: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब आपने हेपेटाइटिस की बात की, तो बरसात के मौसम में हेपेटाइटिस वाले जो पेशेंट आपके पास होते हैं तो क्या लक्षण होते हैं उनमें इसी तरह का?
5: जो इसमें मोस्टली लॉस ऑफ वेट होता है और मरीज को कहना भूख नहीं लगती, मरीज को भूख नहीं लगती और साथ में कहना पीलिया हो जाता है उसको, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, और उसकी हम आंखों से गैस कर सकते हैं, उसके जो स्किन का कलर है उससे हम गैस करते हैं कि इसको जॉन्डिस है नहीं, फिर उसके साथ बाद में टेस्ट वगैरह कराते हैं बिलरुबिन वगैरह, तो उससे हमें पूरा कन्फर्म होता है कि इसको कहना जॉन्डिस है, फिर पूरी हिस्ट्री वगैरह लेके पूरी टेस्ट वगैरह करा के हम उसको कहना डायग्नोस बनाते हैं कि ये वो हेपेटाइटिस है।
4: यानी डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि डिहाइड्रेशन का अलग प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, उसके बाद मलेरिया का भी अलग प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट होता है, या जैसे आपने हेपेटाइटिस की बात की, एक हमने सुना है कि हेपेटाइटिस बी के जो वैक्सीन वगैरह है वो लगवाए जाते हैं।
5: हाँ जी, ये जो कहना वैक्सीन होती है हेपेटाइटिस बी की, ये जब हम पूरा कहना डोज लगाएं तो उसके बाद हमें कहना हेपेटाइटिस बी नहीं होता, पर लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पे लगाते नहीं है क्योंकि थोड़ा वैक्सीन कहना कॉस्टली होती है तो लोग लगाते नहीं।
4: यानी आप मशवरा देना चाहेंगे कि अगर
5: हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सबको लगानी चाहिए
4: तो उससे आपकी जो हेपेटाइटिस की बीमारी है,
5: हेपेटाइटिस बी की जो है प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी।
4: हाँ, तो ये आपने फिर से दोहराइए, हेपेटाइटिस क्या बताया आपने, इसमें किस तरह के लक्षण होते हैं?
5: इसमें एक तो लॉस ऑफ वेट होता है, बंदे का वजन कहना कम हो जाता है, बंदे को कहना भूख नहीं लगती, पेशेंट को शरीर में कहना खारिश होती है, शरीर में कहना पीलापन आता है, और यही मेन कारण वो है, लक्षण है।
4: तो इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करते हैं?
5: इन्वेस्टिगेशन हम इनका कहना ब्लड वो देते हैं टेस्ट के लिए देते हैं, इसमें जो पूरा ब्लड का वो तो टेस्ट होता है, जांच होती है, फिर उसके बाद ही हमें कहना कन्फर्म होता है कि ये कौन सा हेपेटाइटिस बी है या ए है।
4: डॉक्टर विवेक, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहेंगे, आपकी पसंद का कोई गाना हो जो आप अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए?
5: जी जरूर, मेरी पसंद का गाना है ये गाइड फिल्म का, दिन ढल जाए रात न जाए,
4: रफी साहब की आवाज।
5: हाँ जी,
4: और देवानंद साहब की ये फिल्म रही है, बड़ी मकबूल फिल्म रही है।
5: हाँ जी,
6: दिन ढल जाए हाय रात

0: डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में बरसात में जो आम बीमारियां हैं जो लग जाती हैं, जैसे आपने बताया डिहाइड्रेशन, उस पर हमने बात की, इसके अलावा मलेरिया की बात की, हेपेटाइटिस की बात की और स्नेक बाइट की बात की। तो आपने बताया कि लक्षण ये होते हैं, लेकिन कारण क्या होते हैं?
1: हाँ जी, बरसात में ये आमतौर में यहाँ पे देखा गया कि पानी यहाँ पे साफ नहीं मिलता, और मेन कारण इसका जो बरसात में जो इस सारी क्या बीमारी हमने बताई है, ये इसका कारण यही है कि पानी साफ नहीं होता। और दूसरा ये कि पानी जगह जगह रुक जाता है, जिसके कारण मच्छर, मक्खियाँ और अन्य जो कीड़े छीड़े होते हैं वो ज़्यादा करना जन्म लेते हैं, जिसके कारण ये बीमारी सब फैलती हैं।
0: ये हम मान के चलें कि इस तरह की जो खास तौर पे जो बरसात में इस तरह की बीमारियां होती हैं, ये पानी की वजह से होती हैं।
1: हाँ, मोस्टली क्या पानी की वजह से होती है।
0: कौन कौन सी बीमारी ऐसी होती है जो पानी की वजह से होती है?
1: जैसे
0: ये पीने का
1: एक्यूट गैस्ट्रोइंटाइटिस जिसको बोलते हैं, दस्त और उल्टियाँ, फिर मलेरिया, फिर क्या टाइफाइड हो गया, फिर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ये जो बरसात में कॉमन होते हैं, ये मोस्टली क्या पानी से फैलती हैं।
0: अच्छा, तो इसके अलावा और भी जब कोई चीज़ खाई जाए, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं कोई फल वगैरह फ्रूट वगैरह,
1: हाँ जी, सपोज के ना वो साफ़ नहीं है, जैसे कि ना बरसात में मक्खियाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो उनके कारण जो साफ़ नहीं है तो मक्खियाँ बैठ रही हैं उस पर, मच्छर बैठ रहे हैं, तो उसके कारण ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेस होते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे स्नेक बाइट की बात हुई, सांप का डसना, ये बताइए क्या किया जाए अगर इस तरह कोई सांप डस जाता है किसी शख्स को, तो इमिजिएटली क्या करना चाहिए उसे? मान लीजिए हॉस्पिटल या किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, क्या करना चाहिए?
1: हाँ जी, सांप डसना जो यहाँ पे बहुत ही आम बीमारी है, बहुत ही कॉमन, हमारे पास बहुत मरीज आते हैं उसमें। हमें मैं अच्छी तरह बताना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ पूरा ये कि सांप जब भी आपको क्या काटे तो सबसे पहले बात है आपने क्या घबराना नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं मरीज होते हैं जब ज़्यादा क्या टेंशन के साथ, घबराने के साथ, ज़्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं, उसके ज़्यादा नुकसान होने का डर होता है। पहली बात, हमने क्या घबराना नहीं है, और दूसरा कि जो मरीज़ को एकदम क्या कंप्लीट करना रेस्ट देनी है, कोई हिलना चुलना नहीं है, उसको आराम आराम से एक बिस्तर पर लिटा देना है। फिर तीसरा, जहाँ पे सांप क्या सांप ने काटा है उसके ऊपर आप एक कुछ चीज़ से बांध सकते हो,
0: जी जी।
1: लेकिन बांधने का भी एक क्या तरीका है, बांधने से नुकसान भी हो सकता है। बांधना आपने इस तरह है कि उसे सिर्फ वीनस जो सप्लाई होती है वो ही रुके, जो दूसरी सप्लाई होती है आर्टरी सप्लाई होती है वो नहीं रुके, क्योंकि जे सपोज उसकी ब्लड सप्लाई रुकी तो आगे क्या गैंग्रीन बन सकता है। तो इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा क्या प्रेशर नहीं देना होता है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता चलता है कि इस शख्स को सांप ने काटा है?
1: हाँ जी, इसमें हम पहले जो हमारे पास मरीज आता है उससे क्या हिस्ट्री लेते हैं, उससे पूछते हैं कि तुझे सामने काटा, जैसे सपोज वो बोलता है क्या मुझे सामने काटा, फिर तो चलो ठीक है, नहीं तो
0: शरीर में किसी तरह की तब्दीली आती है,
1: फिर क्या फेंक मार्ग होते हैं, जहाँ पे सामने काटा होता है वहाँ पे दो छोटे छोटे निशान होते हैं, उससे हम देखते हैं। फिर साथ में हम इसका टेस्ट करते हैं, टेस्ट का नाम होता है क्लॉटिंग टाइम, जो उसी वक्त उससे हम ब्लड की जाँच करते हैं, जो नॉर्मली होता है ब्लड क्लॉट कर जाता है, ब्लड जम जाता है, लेकिन जब सांप काट जाता है तो ब्लड जमता नहीं है, तो फिर उसके हिसाब से हम गेस करते हैं कि इसको क्या सेंग बाइट है। पर कई बार ये होता है कि सांप, कई सांप होते हैं न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, जिसमें क्या क्लॉटिंग टाइप जो होता है टेस्ट वो नॉर्मल आता है, तो हम इसमें उसके फिर साइन सिम्टम देखते हैं, जैसे पेशेंट को नींद आ रही होती है, उसकी आँखें जो क्या पलकें होती हैं वो बारी हो रही होती हैं, आंखें क्या बंद हो रही होती हैं, और जब सांस क्या घुट रहा होता है, तो ऐसे सिम्टम में जब आए तो फिर भी हमें पूरा क्या कंफर्म होता है कि इसको क्या स्नेक बाइट है, लेकिन जिसमें जो क्या टेस्ट नॉर्मल आता है।
0: आपने बताया कि फर्स्ट एड की का जो ट्रीटमेंट आपने बताया कि जैसे सांप ने डसा या सांप ने काटा, तो एकदम से आपने कहा कि थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए पेशेंट को जब तक कि वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ना पहुंचे। तो एक बांधना है, लेकिन वो भी तरीके से, जब अस्पताल में ये पहुंचता है, उसके बाद आप किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं?
1: जब हमारे पास कोई स्नेक बाइट का पेशेंट आता है, हम उससे पहले पूरी हिस्ट्री लेते हैं, भाई उसे सांप ने काटा भी है नहीं, पूरा कंफर्म करते हैं, टेस्ट करते हैं, क्लॉटिंग टाइम जो होता है टेस्ट होता है वो करते हैं, फिर उसको ड्रिप वगैरह लगा के, तो टेटनस का इंजेक्शन लगा के, फिर जैसे करें टेस्ट हो उसी हिसाब से करें ट्रीटमेंट कर देते
0: ये
1: हैं।
0: कितनी देर में ये पेशेंट ठीक होता है?
1: ये इसको जो सपोज करना स्नेक बाइट है, इसमें हम इसको एंटी वेनम सीरम होता है जो सप्लाई में हमारे पास आता है हॉस्पिटल में फ्री मिलता है वो देते हैं, और फिर उसी हिसाब से जब पूरा करना क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल आ जाए फिर उसके बाद ही करना उसको करना डिस्चार्ज करते हैं। ये 2-3 दिन का ट्रीटमेंट चलता है।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ हम अपनी बातचीत को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं और आपकी पसंद का एक और हम गीत सुनना चाहते हैं, अपने सुनने वाले तक पहुंचाना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए।
1: हाँ जी, ये फिल्म जुर्म का है, जब कोई बात बिगड़ जाए।
0: कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में
1: हाँ जी
0: आपकी पसंद पर सुनने वालों तक हम ये

0: डॉक्टर विवेक मंगोत्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अब बात करेंगे परहेज। जैसे आपने बताया कि अभी हमने बरसात के मौसम में जो आम बीमारियां लगती हैं, जैसे डिहाइड्रेशन की बात की या हेपेटाइटिस की बात की या इसी तरह से बाकी बीमारियां जैसे मलेरिया की बात की, तो परहेज कैसे किया जाए, इन बीमारियों से बचा जाए, क्या बताएंगे आप?
1: परहेज तो बहुत जरूरी है, जैसे बोलते हैं कि वो होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें हम सबसे बड़ा परहेज है कि पानी हमें उबाल के पीना चाहिए। बरसात के दिनों में हमें पानी उबाल के पीना चाहिए। और सपोज हमें कोई दस्त वगैरह उल्टी जे कोई के लक्षण होते हैं तो हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे मच्छरों से बचाव करना चाहिए, मच्छरदानी जो होती है और अपने जो पूरे शरीर को कहना ढकना चाहिए, फुल स्लीव्स कहना पहनने चाहिए और मक्खियों से बचाव करना चाहिए।
0: अपने और जो खाने पीने की चीज़ें हैं,
1: खाने पीने चीज़ें की वही खाने चाहिए जो कहना ढकी हो, ढकी हो बाजार से, जो पूरी साफ सुथरी हो। और अपने घर के आगे पीछे जो जो क्या पानी होता है उसको
0: जमा
1: नहीं होना चाहिए, क्योंकि
0: जहाँ से मच्छर
1: और मक्खियाँ क्या पैदा होते हैं।
0: जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये अक्सर हम फ्रिज का पानी इस्तेमाल करते हैं, ये आप रिकमेंड करते हैं ये पानी पीना चाहिए?
1: ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल ठंडा हो।
0: मुश्किल
1: तो
0: होता है आम इंसान के लिए कि उबला हुआ पानी वो खास तौर पे आज के मौसम में पी ले, तो क्या
1: नहीं इसके नहीं लिए आप ऐसा कर सकते हो कि पानी उबाल के उसी पानी को कहना ठंडा करके
0: जी
1: वो पी सकते हैं, वो ठीक है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए क्या खास आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि बच्चों को इन बीमारियों से बचा के रखें?
1: हाँ जी, बच्चों के लिए ये है कि हमें बच्चे जैसे बोलते हैं कि बरसात के दिनों आइसक्रीम वगैरह या टाफियाँ शुफियाँ जो इस टाइप की जो चीज़ें होते हैं उस बच्चों को नहीं देनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। और जे सपोज कोई बच्चे को कोई उल्टियाँ शुल्टियाँ या दस्त होता है तो उसको बच्चे को नमक चीनी का घोल जो होता है वो देना चाहिए, कंटिन्यूस देना चाहिए। फ्लूइड की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।
0: ये जो आपने बताया घोल की बात आपने की, ये अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो या किसी को दस्त वगैरह की शिकायत हो वो भी ले सकता है?
1: हाँ जी, वो भी ले सकता है। ये नमक चीनी का घोल एक वरदान है जो आपकी जान बचाता है डिहाइड्रेशन से।
0: तो खाने पीने जो घर में हम खाते हैं खाना वगैरह, उसमें किस तरह का एहतियात बरतना है?
1: खाने पीने में ये है कि आपने थोड़े दिन कहना पतला खाना है, जैसे कहना खिचड़ी वगैरह होगी, ज़्यादा हैवी मील नहीं करना है, लाइट मील करना है।
0: डॉक्टर विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे। चलते चलते आप अपनी पसंद का एक और गाना हमें बताइए जो हम अपने सुनने वालों तक पहुंचाएंगे इस कार्यक्रम के जरिए।
1: ये जगजीत सिंह का गाना है, होंठों से छू लो मेरा गीत धमाका।
0: जी जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पसंद का गाना हम जरूर अपने सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर विवेक मंगोत्रा के साथ की गई बातचीत आप सुन रहे थे। आपकी बातचीत का विषय था बरसात के मौसम में लगने वाली आम बीमारियां, कारण और उपचार। डॉक्टर विवेक मंगोत्रा के साथ बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। अंबाला के प्यारे श्रोताओं, आज हमारे पास अंबाला के इतिहास और गर्व से जुड़ा एक बेहद खास तोहफा है। आप सब जानते हैं कि अंबाला का शहीद स्मारक अब बनकर तैयार है। ये वो पावन भूमि है जिसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंक कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया था। ये स्मारक हमारे शहीदों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है और इसी महान विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए अंबाला के जाने माने संगीतकार श्री विशाल गोल्डी ओम नमो साउंड्स, जिन्हें हम विशाल शर्मा के नाम से भी जानते हैं, लेकर आए हैं एक जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम थीम सॉन्ग। ये गीत अंबाला की मिट्टी की कहानी कहता है, उस जज्बे

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दुनिया।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़, रेडियो विद अस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर। क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
1: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: राम, अगर हम तुम्हें 5,00,000 रुपया दें तो क्या तुम दूसरा शरीर स्वीकार करोगे?
2: नहीं, कभी नहीं।
1: अच्छा राम, अगर हम तुम्हें 1,00,000 तोला सोना दें तो वापस जाओगे?
2: अयो नोको नोको नोको, अगर वो सोना लेके मैं नीचे गया तो वो लोग मेरे को स्मगलर समझ लेंगे।
1: राम यहाँ। कुछ पियोगे?
2: क्या पिलाएंगे आप मेरे को? चाय पिलाएंगे या लस्सी पिलाएंगे?
1: नहीं, सोमरस।
2: सोमरस क्या होता महाराज? अरे अरे, दारू की बात कर रही था। किधर की दारू पिलाएंगे? गोलकुंडे की या स्कॉचिस की?
1: नहीं, ये देवता लोगों का जलपान है, इसको पीने से तुम मत हो जाओगे।
2: मत हो जाऊंगा क्या? नीचे तो मैं कंट्री पीता था खाली। जल्दी पिलाओ महाराज।

0: सोमरस का कलर तो कोको कोला के जैसा है। महाराज
1: बोलो।
0: एक बात याद आ गई महाराज मेरे।
1: पूछो।
0: वो हमारे नीचे ये पीने के लिए कहीं परमिट है कहीं परमिट नहीं है, यहाँ का क्या हिसाब किताब है?
1: मगर यहाँ कोई रोकथाम नहीं, ये देवलोक है, यहाँ जी भर के सोमरस पियो, घी भर के सोमरस पियो।
0: एक दूसरी बात भी याद आ गई महाराज।
1: बोलो।
0: इधर आओ। मैं शराब पीने से पहले ही आपको बोल देता हूँ, बाद में आप ये नहीं बोलना कि मैं नशे में बोल रहा
1: हूँ। अच्छा।
0: एक पोटी थी।
1: पोटी?
0: हाँ, मेरा मतलब एक छोकरी थी।
1: अच्छा।
0: उसका नाम था चुनिया।
1: चुनिया?
0: हाँ। आजकल के जमाने की वो छोकरी थी, उन्हें प्यार मेरे से करती थी, मेरे कंधे पे से किसी दूसरे को देखती थी और उसके दिमाग में कोई तीसरा रहता था, इसलिए उन्हें जल्दी मर गई। अगर आप मेरे को चुनिया से मिला दिए तो मैं बगैर किसी तकलीफ के किसकी भी बॉडी में बोलो घुस जाऊंगा।
1: शाबाश, तो फिर घुस जाओ उन बादलों के झुंड में जहां चुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ
2: चुनिया। अरे किधर है?

माझी घासले दाल को खूप झालं ना, इतके माझी ती कांदी लाव

0: ताज महल एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: सच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: बधाई हो ताऊ, अपना मनोज 12वीं में अच्छे नंबर से पास हो गया।
3: वाह बेटा, नाम रोशन कर दिया गांव का।
2: बस आप लोगों का आशीर्वाद है।
3: अब आगे क्या करने का सोचा है?
2: आगे का तो अभी फिलहाल
3: रे, अब उसे हरियाणा की किसी ITI में दाखिला दिला दे, ताकि वक्त रहते अपने हुनर को सवारे और जीवन में आगे बढ़ सके। प्रदेश के युवा राज्य की 197 सरकारी व 180 प्राइवेट ITI में 1 या 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कुल 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
4: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।
0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: पेशा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 4, प्रस्तुत करेंगे RJ किरणी।

सभी सुनने वालों को किरणी का नमस्कार। पेश है कार्यक्रम सरगम। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के गीत के साथ, जिसको संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, जिसके गीतकार है अनजान और गायक है किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

पेश कैसे फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए से, जिसके संगीतकार और गीतकार है रविंदर जैन और गाया है हेमलता ने।

0: लीजिए आप सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म प्रेम कहानी से गाना, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार है आनंद बख्शी।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे प्यार

0: अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है सरगम।
1: क्या फिल्म?

प्रोग्राम की अगली पेशकश है फिल्म त्रिशूल से, जिसके संगीतकार है खयाम, गायक है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश, और गीतकार है साहिर लुधियानवी।

लीजिए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म कारवां का गाना, जिसके गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है आरडी बर्मन।

अब सुनाने जा रहे हैं वर्मा मल्य का लिखा हुआ गीत, जिसको संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गायक है लता मंगेशकर और फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान।

अगली पेशकश है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार की आवाज में गाना, जो फिल्म है अमर अकबर एंथोनी से, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और उसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अब सुनते हैं आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, जिसके बोल है आनंद बख्शी के, गायक हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर, फिल्म है हरे कृष्णा हरे रामा।

लीजिए पेश है प्रोग्राम की अंतिम पेशकश, जिसके गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक आशा भोसले और फिल्म है लोफर। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत, किसी और प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 4, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, रिकॉर्डिंग व निर्देशन भरत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
3: पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
4: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
5: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
4: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
5: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
4: अभी कॉल करें 7056413010, 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

रमेश मराठा। मेरे पास से गुजरकर मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए

कहीं आकाश से घूमते घूमते जब ये आवारा बादल टूट जाते हैं तो हम यहां भीग जाते हैं। खुशनुमा माहौल चारों ओर नजर आने लगता है। जन्नत जैसा एहसास हम महसूस करते हैं और सिखा जाती हैं ये मासूम हवाएं जीने का

ये चाहते कभी बुरी नहीं होती हैं। नई नवेली दुल्हन की तरह हमेशा जवान और पुरकशिश रहने का दावा करती हैं। तभी तो हर अंजुमन में तेरा जिक्र होता है खामोशी से। चुपचाप उतर जाती हो आंखों में आंसू की तरह।

0: इन फासलों के दरमियान ये खाली जगह तुम भर जाती, शायद फिर से जीने की लालच पैदा होती। सफेद बर्फ की चादर पर अपने कदमों के निशान पीछे छोड़ जाते, तुम मुझे थाम लेते, मैं तुम्हें सहारा देता, तुम्हारे डगमगाते कदमों को मैं संभाल लेता। कुछ तुम कहते, कुछ मैं कहता, शायद शायद एक नए सफर की शुरुआत होती।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से।

जो तेरे सिर से सरकता रहा, नीले रंग का दुपट्टा हम हर पल संभालते रहे, जो तेरे बदन की खुशबू महफिल को मोतर कर गई, हम तेरे आंचल में छिप गए, तुम्हारे बदन से सिमटने की कोशिश भी की, शायद पास आते साथ रहते, मगर यह हो न सका, ख्वाब बनते गए और अक्सर बिखरते गए।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो हितसत्ता सुनना भूलना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो हितसत्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिनभर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हितसत्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: जी हाँ श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और आज काफी दिनों के बाद आपसे रूबरू हूं और मुझे आप सभी श्रोताओं की बहुत सारी याद आ रही थी, पर उससे पहले मैं टीम रेडियो वितस्ता जिसमें कृष्णा और नैना है, उन्होंने आप सभी को मनोरंजन से सराबोर किया, उनका शुक्रिया। और हमारी कोशिश होती है कि टीम के तौर पर जब हम काम करते हैं तो ये मायने नहीं रखता है कौन माइक पर है और कौन नहीं है। मैं शाबाशी देना चाहूंगा अपनी टीम को जिसमें कृष्णा, नैना, जिन्होंने पिछले एक पखवाड़े से आप सभी का ध्यान रखा, आप सभी का मनोरंजन किया। और आज के कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही और इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:35। श्रोताओं, आज 27 जुलाई है। आज का दिन हमें एक तरफ जहां देश के महान सपूत की याद दिलाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे जीवन, काम और छोटी छोटी खुशियों को सराहने का संदेश भी देता है। आज का दिन इतिहास और प्रेरणा की तरंगों से सजा हुआ है। आइए आप सभी से ये जानकारी मैं साझा करता हूं। पहला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि। आज पूरे देश भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। उन्होंने कहा था, स्वप्न वो नहीं जो हमें सोते हुए देखते हैं, स्वप्न वो है जो हमें सोने नहीं देते। उनका जीवन और उनके विचार आज भी हर भारतीय, विशेषकर युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक दीय की तरह हैं। और साथ में आज है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित कार्यकाल दिवस, यानी इंटरनेशनल सेफ वर्किंग प्लेस डे। आज का दिन हर कामकाजी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिलाओं, के लिए बेहद खास है। ये दिन सुरक्षित, स्वस्थ और भय मुक्त कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस की वकालत करता है, ताकि हर इंसान शाम को सुरक्षित अपने घर और परिवार के साथ लौट सके। रेडियो वितस्ता आज डॉक्टर अब्दुल कलाम के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और आप सभी के सुरक्षित व समृद्ध जीवन की कामना करता है। श्रोताओं, डॉक्टर कलाम की प्रेरणा और जीवन के इन सुंदर रंगों के साथ अब समय हो चला है आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं पर विराम देने का और आपसे विदा लेने का। आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। काफी दिनों के बाद आपके लिए कुछ पंक्तियां लाया हूं और आप सभी के लिए ये पंक्तियां हैं। पंक्तियां यूं हैं, वितस्ता की लहरों से गूंजता रहे कलाम का पैगाम, वितस्ता की लहरों से गूंजता रहे कलाम का पैगाम, मेहनत और सुरक्षा से महके हमारा एक और काम, मेहनत और सुरक्षा के साथ महके हमारा हर एक काम, लेकर नई उम्मीदें आज के इस सफर को देते हैं विराम, लेकर नई उम्मीदें आज के इस सफर को देते हैं विराम। भारत सोपोरी की तरफ से आज आप सभी को आदर सहित नमस्कार और प्रणाम। जी हां दोस्तों, और आज मैं आप सभी के समक्ष हूं तकरीबन एक पखवाड़े के बाद, और उम्मीद करता हूं कि आप भी सोच रहे होंगे कि वो आवाज कहां गई जो हमें हर दिन शाम को 9 बजे, रात के 9 बजे हम सबसे रूबरू होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसे ही बदलाव आप देखते रहेंगे, अलग अलग आवाजों के माध्यम से हम आपको सराबोर करते रहेंगे। आइए अब आपको देते हैं कल के कार्यक्रमों का विवरण। कल 28 जुलाई 2026 हमारी सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और साथ ही पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत, और 7:05 पर मंगलवार को आप सुनते हैं कार्यक्रम घर परिवार। कल होगा एपिसोड 7 निर्जया बख्शी के साथ, पेश करेंगे आरजे किरणी। 8:30 सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 41 सशक्त पत्नी, पेश करेंगे नरेश शर्मा। और 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए राजेंद्र रहबर से बातचीत, और 10 बजे होगा कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 4। हमारे साथ होंगी सवीना वर्मा, पेश करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत, और 7 बजे होगा कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 3, पेश करेंगे आरजे किरणी। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, कल शीर्षक होगा मिले जुले गीत, पेश करेंगे रमेश मरहटा। ये था विवरण आज के कार्यक्रमों का, और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। उम्मीद है कि आज का ये प्रसारण आपके विचारों को नई ऊर्जा और दिल से सुकून देगा। कल फिर हाजिर हम होंगे इसी तरंग पर कुछ नई बातों, सुनहरी यादों और सदाबहार गीतों के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। तो आज के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।